बना जिस दी वस्त तिसे कर आवे बैठा सोडी पात साह रामदास सतगुरु कहावा पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावा ऐसे दीन दयाल सतगुरु सोडी सुल्तान पिता सौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज अज दे शुभ दिहाड़े गुरता गद्दी उपर विराजमान होए तिना सतगुरों का गुरता गद्दी गुरपुरब बेअंत संगतां सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना सत्कार नाल मना रही हैं जथा सकत पेटावां हाजर कर रही हैं सतगुरु जीओ सरबत साध संगतां दियां हाजरियां तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनियां अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप

0: गांव पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, ज्ञान अमृत।

रास अति आनंद तुलसीदास तुलसीदास अति आनंद।

ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਗਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

एक कलाकार इस प्रोग्राम दे तहत जिस भी बाला सुब्रमण्यम बारे गलबात की जाएगी उन्होंने संगीत जीवन से थोड़ी जानकारी दी जाएगी सवेरे 9:02

व्हाट्सएप के जरिए तुम्हें थोड़ी मनपसंद गीत सुनाए जाएंगे, फरमाइशी गीत सुनूंगी। प्रोग्राम हेलो माफ करना तमक जलंधर 35 सवेरे 11:05

डॉक्टर शोभिता कक्कड़। इस दिनों में कथा लोग देते हैं ठीक कथा सुनोगे बच्चे की शरारत। दोपहर 1:15 तो लैके 1:40 तक ते फिर 2:00 तो लैके 2:15 तक सुनोगे प्रोग्राम फांची निराली।

0: रंगली धरती ये प्रोग्राम तुसी सुनोगे दोपहर 2:30 बजे। अज इस प्रोग्राम दे विच पाली देत वालियां दे गाए कुछ लोक गीत सुनाए जाणगे। साढ़े दूजी सभा से प्रोग्राम लैके आवेंगे शामी 4 बजे ते सभा के शुरू में सुनोगे पंजाबी फिल्म संगीत। शामी 4:30 बजे तुहानू लै चलेंगे श्री दरबार साहब अमृतसर, जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शामी 5:30 बजे। ₹6:05 ते देश प्यार दे गीत सुनाए जाएंगे ते मौसम दा हाल सुनाया जाएगा। ₹6:30 किसान वाणी प्रोग्राम सुनेंगे प्रायोजित प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम दा हाल ते मंडियां दा भाव सुनाए जाएंगे। इस अलावा दुध उत्पादन किते विच औरतां दा योगदान, इस विषय ते गलबात करेंगे डॉक्टर रेखा चावला। 7:10 ते साढ़े दिल्ली केंद्र रही एक विशेष प्रोग्राम सुनोगे जन सेवा से देश सेवा। 7:45 ते प्रोग्राम होगा समाचार दर्शन। 8:10 ते स्टेट होकर प्रोग्राम सुनोगे जन सेवा ते देश सेवा तक। 8:40 ते पंजाबी गीत सुनाए जाएंगे ते 10:00 बजे वीवीए एशियन खेडा दे मुख झलकियां सुनाइया जाएंगियां। 10:20 ते हिंदी गीत सुनोगे ते 10:30 बजे प्रोग्राम होगा सरगम। 4 ते मुख्य समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार पेश कीते जाएंगे। ऐ सन साडे अज दे बाकी दिनां दे प्रोग्राम्स ते उहनां दा प्रसारण समा। असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। सवेर दे 6:55 वजण वाले ने हुण तों कुछ ही पलां बाद साडे दिल्ली केंद्र राहीं तुसीं सुणोगे संस्कृत विच समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका रिचा झा। अथ वार्ताः। भारतेन रूस ईरानयोः विरुद्धं प्रतिबंध संबद्धाधिनियमस्य विषये स्वकीयाः हितचिन्ताः पुनः स्पष्टतया प्रतिपादिताः। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अधिवेशनावसरे ह्यः सायं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य विदेशमंत्रिणं मार्को रूबियो इत्येतं मिलितवान्। तस्य चिन्ताः तस्य समक्षं प्रस्तुतवान्। उभौ नेतारौ भारत संयुक्त राज्य अमेरिकया देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां, युक्रेनस्य च परिस्थितीनां विषये अपि चर्चां कृतवन्तौ। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः गतसप्ताहे रूस ईरानयोः विरुद्धं प्रतिबन्ध सम्बद्धाधिनियमं विधिरूपेण प्रवर्तितवान्। अस्य अधिनियमस्य अन्तर्गतं रूसदेशात् तैलं वातेन्धनं च क्रयमाणेभ्यः देशेभ्यः अधिकतमं 100% शुल्कम् आरोपयितुं प्रावधानमस्ति। अस्य प्रत्युत्तरे नवदिल्ल्या उक्तं यत् भारतं स्वकीयानाम् आर्थिकहितानां संरक्षणाय तथा राष्ट्रस्य ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुं सर्वान् आवश्यकान् उपायान् करिष्यति। डॉक्टर जयशंकरः रविवासरे न्यूयॉर्क नगरं प्राप्तवान् तथा संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 180 तमे अधिवेशने

हेक्टेयर हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेडा विच महिला स्की टीम मुकाबले दे विच कांसी दा तमगा जीतने लई परिणास तालीवाल, राइजा टिलो ते महेश्वरी चौहान नू वधाई दित्ती। इस हुण तक दे मुख समाचार, असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। लोगों सुनो जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर।

निकाह फिल्म दा एक गीत सलमा आगा दी आवाज दे विच हुणे तुसी सुनिया। प्रोग्राम चल रहा जी सोहनी सवेर ते शीतल है तुहाडे नाल। ते हुण समा है जी अज दे दिन दे बारे गल करन दा, यानी कि अज है 24 सितंबर। हिस्ट्री ऑफ द डे की कहंदी है, अज दे दिन केड़ियां खास खास घटनावां साडे इतिहास दे विच होईयां जिन्हां नूं असीं अज याद करांगे। सब तों वड्डी कामयाबी दी गल कर लईए जां इतिहास दी वड्डी घटना दी गल कर लईए, ओह ए सी कि 24 सितंबर 2014 नूं भारत दा मंगलयान यानी कि साडा मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल दी कक्ष दे विच सफलतापूर्वक पहुंचिया सी। सो भारत दी बड़ी वड्डी उपलब्धी सी ते दुनिया दे विच भारत ने जड़ा है एक झंडा लहराया सी कि असी भी कुछ नवा करके दिखाया। इस तो अलावा 24 सितंबर 1932 नूं महात्मा गांधी ते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे विचकार पूना पैक्ट होया सी। इसका संबंध दलित समाज की प्रतिनिधता दे नाल सी। 24 सितंबर का दिन इंटरनेशनल दिनों दे विच भी इसका नाम है। कहंदे ने कि 24 सितंबर नूं इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वैपन दे नाम दे नाल मनाया जांदा है, यानी कि परमाणु हथियार दे पूर्ण खात्मे दे बारे जागरूकता पैदा करन दे लई। वैसे भी दोस्तों, जंग किसी मसले का हल नहीं हुंदी, सगों इस तरह के वैपन का इस्तेमाल करके असी अपने नाल नाल अपने आने वाली पीढ़ियां का भी नुकसान करते हैं। सो बहुत जरूरी है कि असी इस गल का ख्याल रखिए कि जिन्नी मुहब्बत प्रेम शांति ते मसले बैठ के हल हुंदे ने ओ कदी लड़ाई झगड़े दे नाल नहीं हुंदे। सो ए सी अज दे दिन दे इतिहास नाल जुड़ियां कुछ खास खास घटनावां। अगला गीत सुनदे आं ते फेर आउनी आं मैं वापस।

दोस्तों कहिंदे जिंदगी एक बड़ी खुली किताब है, पर किसी ने यह भी कहा है कि जड़ा बंदा घूमदा नहीं ना वह इस किताब नू कदे पढ़ ही नहीं सकया। शायद जिंदगी दे पहले पन्ने ते ही अटकया रहिंदा है, क्योंकि धरती सिर्फ एक जगह नहीं है, यह तां एक विशाल गोले की कहानी है। किते बर्फ दे नाल टके पहाड़ ने, किते समुंदर दीआं बेअंत लहरां ने, किते जंगलां दी खामोशी है ते किते पंछियां दीआं आवाज़ां ने, किते रेतले मैदान ने ते किते हरे भरे खेत। ते फिर इस धरती ते रहण वाले लोग भी तां ने जिन्हां दीआं अपणीआं बोलियां ने, अपने पहरावे ने, अपने रस्मों रिवाज ने ते अपणीआं कहानियां ने। इक्को धरती ते इन्नीआं वक्खरीआं जिंदगीआं, ते शायद इस दे लई घूमणा सिर्फ एक थां तों दूजी थां ते जाणा नहीं हुंदा। पर अज असीं यात्रा नूं कई बार सिर्फ कैमरे की स्क्रीन तक ही सीमित कर दिंदे आं। जिद्दां कि असीं किसे खूबसूरत जगह ते पहुंचे, फोटो खिंची, वीडियो बनाई, फोन विच संभाल के रख ली ते फिर दोस्तां दे नाल शेयर कर दित्ती। कि यात्रा सिर्फ साडी इन्नी की हुंदी है? शायद नहीं। असल यात्रा वो नहीं है जो तुहाडे फोन की गैलरी दे विच रह जाए। असल यात्रा तो वो है जो तुहानू अंदर तो बदल दे। कोई पहाड़ तुहानू खामोश रहना सिखा दे, कोई दरिया वगदे रहना सिखा दे, किसी अजनबी की मुस्कुराहट तुहानू ये दस दे कि इंसानियत की कोई भाषा नहीं होंदी, ते कोई नवा शहर

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानण लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स ते। इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तों 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138

तापमान ते घट तो घट 22.8 डिग्री सेल्सियस रहने बारे उन्होंने दस्सिया है। ते जलंधर दी जेकर मैं गल करा ते जलंधर दे विच वध तो वध तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते घट तो घट 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों जिवें मौसम हर पल अपना रंग बदलता है ना, उसी तरह ही जिंदगी भी बदलाव का ही नाम है। मौसम सानू यह सुनेहा दिंदा है कि बदलाव कुदरत का नियम है, पर हर बदलाव अपने नाल एक नवी उम्मीद भी लेके आंदा है। क्योंकि जे अज थोड़ी जी धुप तेज हो गई है, थोड़ी जी गर्मी हो गई है, ते कुछ ही समय बाद ठंडक भी आवेगी। सो इसे तरह ही जेकर जदों भी जिंदगी दे विच मुश्किलां दी गर्मी महसूस होवे ना, ते हौसला नहीं छड्डना, मौसम वल ध्यान दे देना, क्योंकि इत्थों सानू यह खबर जरूर मिलती है कि समय की हवा जरूर बदलती है। सो इसी सोच दे नाल नाल अज दा सोहनी सवेर प्रोग्राम अपनी दोस्त शीतल नूं इत्थे खत्म करन दी इजाजत दिओ। नमस्कार।

0: इस सुंदर सी जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर असि आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण तो थोड़ी देर बाद जिवें 8 बजे सुनोगे समाचार प्रभात, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 बजे पंजाबी विच खबरां प्रसारित कीती जाणगियां।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की

0: सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
1: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
2: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
1: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
3: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
4: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
5: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5,00,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप

0: और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेन ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सरताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सरताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अपडेट रहे आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, चार बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, एडीबी और OECD ने भारत की 2026-27 की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks including regional rural banks to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And India beat England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. A report.
3: The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants traveling across multiple states, districts and villages. During the journey, the Seva Yatris have engaged with local communities and participated in service-oriented activities. These include cleanliness drives and interactions with beneficiaries and residents, as well as activities at schools, hospitals, nursing homes and other communities.

0: the Hindustan Times. The Hindu mentions India-EU to sign trade deal on December 16. The Asian Age reports Xi to kick off US visit with rare plainside welcome from Trump. The Financial Express takes note S&P, Fitch, ADB, OECD upbeat on FY27 growth. India growth outlook gets global upgrade. And finally, words long used in Caribbean, Bermuda now part of Oxford Dictionary, says the Times of India. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshabina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा, पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान तहत गुजरात के वाटनगर तो वाराणसी तक सेवा यात्रा के भागीदारां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं गलबात करनगे। दिल्ली सरकार ने औरतां अते ट्रांसजेंडर नूं सुरक्षित ते सम्मानजनक रुजगार दे मौके प्रदान करन लई दुर्गा योजना नूं मंजूरी दित्ती। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर ते प्रयागराज च शुरू हुई। खेतरी ग्रामीण बैंकों समेत सारे बैंक ग्राहकों की सुविधा लई इस एतवार 27 सितंबर नूं खुले रहणगे। एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वल्लों मनी लॉन्डरिंग नाल संबंधित एक मामले च लुधियाणा, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला अते दिल्ली च 26 थावां ते छापेमारी जारी। तो भारत ने समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में इंग्लैंड नूं हराया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सेवा संकल्प अभियान तहत वाडनगर तो वाराणसी तक सेवा यात्रा के भागीदारां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं गलबात करनगे। इस यात्रा दौरान सेवा यात्रा के भागीदार प्रधानमंत्री नाल अपने तजर्बे साझे करनगे। इस यात्रा का उद्देश नौजवानों की भागीदारी ते जनतक सेवा नूं जीवन के वख-वख खेत्रां दे लोकां नाल जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर नूं शुरू हुई सी ते इह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे 25 सालां दे जनतक जीवन नूं उजागर करन लई इक व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्रा के भागीदार वख-वख राज्यां, जिलों, तहसीलों ते पिंडां विचों यात्रा कर रहे ने। जनतक सेवा ते जनतक भागीदारी नाल संबंधित गतिविधियां विच हिस्सा भी लै रहे ने। इन्हां विच सफाई मुहिम, स्थानक लोकां ते लाभपात्रियां नाल गलबात करना, स्कूलां, हस्पतालां ते होरनां भाईचारक थावां ते सेवा गतिविधियां करना शामिल है। इस यात्रा का उद्देश सेवा संवाद, नौजवानों की भागीदारी, समाजिक भलाई ते भाईचारक शमूलियत नूं उत्साहित करना है। 10 समूह वाडनगर तो वाराणसी तक मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वाडनगर तो गृह मंत्री अमित शाह ते गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की सी। उस मौके पर वाडनगर तो वाराणसी तक एक साइकिल यात्रा को भी रवाना किया गया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दुर्गा ई आटो योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश राष्ट्रीय राजधानी में औरतों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित, साफ और सम्मानजनक रोजगार के मौके प्रदान करना है। इस योजना के पहले गेड़ में 1300 गुलाबी इलैक्ट्रिकल आटो अलॉट किए जा रहे हैं। इस योजना को कल नवी दिल्ली च मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रधानगी हेठ हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग च मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 1170 ऑटो औरतों लई ते 130 ट्रांसजेंडर लाभपात्रियों लई राखवें रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना औरतों ते ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलैक्ट्रिकल ऑटो के मालक ते ड्राइवर बनने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि हरेक मालिया जिले च औरतों लई वध तो वध 90 इलैक्ट्रिकल ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभपात्रियों लई 10 तक इलैक्ट्रिकल ऑटो अलॉट किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को एक सुरक्षित, हरा भरा ते वधेरे समावेशी शहर बनाने वाले एक पहलकदमी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एच जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट नाल मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के विकासशील मुल्कों

अंतर खेतरी समूह एलोनतर सलाह मशवरा मीटिंग दी सह प्रधान की कीती। मीटिंग नू संबोधन करदा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया च हो रही बेमिसाल तब्दीलियां दा ग्लोबल साउथ के मुल्कां ते सब तो वध प्रभाव पै रहा है ते संयुक्त राष्ट्र इन्हां उम्मीदां नू पूरा करन विच असफल रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मौजूदा टकरावां ते अंतरराष्ट्रीय शांति ते सुरक्षा लई खतरियां नू हल करन च समर्था सुधार की जरूरत नू उजागर करती है। उन्होंने जोर दे के कहा कि सुधारों में लगातार देरी लंबे समय तो चल रही असमानतावान कायम रखती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एलोनतर ते सी 10 के मैंबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लई उपरालों अगे वधाउण वास्ते इकट्ठा काम कर रहे हैं। जिक्रयोग है कि एलोनतर विकासशील मुल्कों का एक अंतर खेतरी समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक ते तुरंत सुधार की मांग करता है। उधर सी 10 10 अफ्रीकी यूनियन देशों का एक समूह है जो सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी देशों की सांझी स्थिति अगे वधाने काम करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के टैक्सी ड्राइवरों ते किसानों लई दो वड्डियां पहलकदमियां शुरू करदिआं भारत टैक्सी सेवा ते मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना की शुरुआत की है। इस नवी पहलकदमी तहत दुपहिया वाहन तीन पहिया वाहन ते टैक्सी ड्राइवर बिना किसी कमीशन के प्लेटफॉर्म च शामिल होणगे अते उन्हां नूं 5 लाख रुपए तक की समाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत टैक्सी ने लखनऊ गोरखपुर कानपुर वाराणसी ते प्रयागराज विच काम शुरू कर दिता है। लखनऊ हवाई अड्डा लखनऊ मैट्रो ते लखनऊ पुलिस समेत वख-वख संस्थावां नाल भी समझौतियां ते दस्तखत किए गए ने। दूजे पासे मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना तहत किसानों नूं महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी पेंडू विकास बैंक वालों किसानों नूं दिते गए कर्जियां उत्ते व्याज दर 11% तो घटा के सिर्फ 6% कर दी गई है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि सारे जनतक खेत्र के बैंक ते खेतरी पेंडू बैंक एतवार 27 सितंबर नूं खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि कदम बैंक यूनियनां दी संयुक्त फोरम वालों 28 तो 30 सितंबर तक बुलाई गई तजवीजशुदा 3 दिन देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनज़र चुकया गया जो 26 ते 27 सितंबर छुट्टियां दे नाल मेल खाती है। इस विच कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एतवार नूं सारियां बैंक शाखावां दफ्तर ATM लिंक शाखावां ते करंसी चैस्टां नूं पूरी तरह चालू रहन की प्रवानगी दे दित्ती है। चोन कमिशन ने कहा है कि वोटर सूची सोच समेत सारे फैसले सरसम्मति नाल लए गए ने। कमिशन ने दस्सिया कि इसने देश भर में हाल ही के महीनों च कई फैसले लए ते करीब 40 नवीं पहलकदमियां पेश कीतियां अते विशेष तीबर सोच समेत कई चोण सुधार कीते ने। कमिशन ने कहा है कि विचारां ते निरखणां च अंतर किसी भी संस्था विच विचार वटांदरे दा एक आम हिस्सा है ते इह अंतिम फैसला लैण तों पहलां फैसला लैण दी प्रक्रिया दा ही हिस्सा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तिरुपति इन्फा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाल संबंधित एक मामले के संबंध में दिल्ली मोहाली चंडीगढ़ पंचकूला ते लुधियाना च 26 थावां ते छापेमारी शुरू की है। यह ऑपरेशन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट तहत किया जा रहा है। डायरेक्टोरेट ने कहा है कि बैंक धोखाधड़ी के मामले च शामिल निजी कंपनियां दे प्रमोटरां डायरैक्टरां ते होरनां सहयोगियों खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी मुताबक तिरुपति इन्फा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोजेक्ट नाल संबंधित 290 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी के मामले च शामिल है। ईडी ने ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी ते पंजाब सरकार दे आवास ते शहरी विकास विभाग के दफ्तर च इक्को समय निरीक्षण भी किए। इसका उद्देश गमाडा नाल जुड़ियां दोषी संस्थावां खिलाफ इल्जाम सबूत इकट्ठे करना है। जांच एजेंसी ने कहा है कि एक निजी सलाहकार कंपनी ने गमाडा अधिकारियों नाल मिलीभुगत करके जमीन प्राप्ति विच बेनियमियां नूं सुविधा दित्ती। इस मामले में जांच जारी है। भारत ने कल ओमान के पूर्वी तट के व्यापारक जहाज MV केप टाउन से हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज से सवार 20 भारतीय मलाहों में 19 सुरक्षित बचा लिया गया जबकि एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। मंत्रालय ने मृतकों के परिवार नाल हमदर्दी जाहिर की। मंत्रालय ने कहा है कि ओमान च भारतीय दूतघर स्थिति के नेड़े नज़र रख रहा है तो भारतीय मलाहों की जल्द वापसी लिए ओमान के अधिकारियों नाल तालमेल जारी है। राजस्थान के जोधपुर में बीती शाम एक कैमिकल फैक्ट्री में भयानक अग लग गई जिस विच अग बुझाने की कोशिश करते हुए एक धमाके च 13 अग बुझाऊ कर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि इमारत में भंडार किए जलनशील रसायणों के ड्रमों में अग लगन तो बाद अग तेजी फैल गई जिस कारण कई धमाके हुए। भारतीय मर्द टीम

जी, जिस सूत्रों के मुताबिक देखी तो 5 अगस्त 2020 को SP बाला सुब्रमण्यम की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिस तो बाद उन्होंने चेन्नई के MGM हैल्थ केयर होस्पिटल में दाखिल करवाता। शुरुआत में तो कोरोना के हल्के हल्के लक्षण उन्होंने शरीर च नजर आए, पर बाद उन्होंने हालत बिगड़ गई तो इनफेक्शन फेफड़िया

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो हुन कुछ गजलां समात फरमाओ।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। जापान दे खेड मैदानों विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जाणोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश शुरू हो चुका है। किशोर कुमार दी गाए हुए इस गीत दे नाल ते साडे कोल इक कॉलर भी आके जुड़ चुके ने। आओ गलबात करके उन्हां दी फरमाइश पुछदे आ। हैलो
1: हैलो,
0: हां जी सर, कौन गलबात कर रहे हो?
1: मैं कुलदीप बोलदा जी, पिंड लाडिया गौर ते जिला लुधियाना जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच। तुसी अपने रेडियो सेट दी आवाज थोड़ी जी घट करो, थोड़ी गलबात समझण च थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी मेनु तुहाडी आवाज पूरी सुनाई दे रही है, अपने दसो गीत केड़ा सुनोगे? हैलो जी, लगता इन्हां नाल साडी राबता चंगी तरह डिवेलप नहीं हो रहा। कोई ना, इन्हां ने सानूं अपनी फरमाइश दसी सी तनू वेट्स मनो फिल्म दा गीत सुनना चाहुंदे ने। लैंबर हुसैनपुरी दी आवाज़ विच आओ, इन्हां दी फरमाइश पूरी कर दें।

0: करने जा रहे ने। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, हेलो जी, कौन गल बात कर रहे हो?
1: हेलो,
0: हेलो हेलो,
1: सतरीकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन गल
1: हेलो
0: हेलो कौन गल बात कर रहे हो? सत श्री अकाल जी, हेलो
1: मैं कुलवंत सिंह बंड पोजो के जिला फरीदकोट तो बोल रहे मैम।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। गाना केड़ा सुनाइए थानू अज?
1: धन्यवाद मैम, ताडा भी फरीदकोट के एक गाना सुना दे जी, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम।
0: जी, नींद हमारी
1: लेना
0: ख्वाब
1: है
0: तुम्हारे।
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन कर ली। अपना मनपसंद गीत सुनो रेडियो सेट से।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

ஐயா.

जी हेलो, फरमाइश प्रोग्राम दे विच समा हो रहा 10:44 ते ऑलमोस्ट 31 सैकेंड, ते हजे भी पूरे 15 मिनट हैं। इस प्रोग्राम विच जुड़ के तुसी भी अपनी मनपसंद गीतां दी फरमाइश कर सकते हो। सो कोशिश करके एक होर कॉलर साडे नाल आके जुड़ चुके ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो हैलो हैलो हैलो जी, फोन तो चुकया हुआ पर गलबात नहीं हो पा रही। हैलो जी, चलो कोई ना जी, सानू सतीश गुलियाने जी ने फोन किया सीगा दिलकुशा मार्केट तो, इन्होंने अपनी फरमाइश दसी सी रोटी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। सो इन्हों की फरमाइश पूरी करन जा रहे हैं, आप भी इंजॉय करते हैं इस गीत।

0: कौन गल बात कर रहे हो? हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, अपना नाम दसो। हेलो,
1: हेलो,
0: अपना नाम दसो जी। सर ने चंगी तरह गल बात नहीं हो पा रही। कोई ना जी, करनाल तो मोहम्मद राशिद जी का फोन सी। इन्होंने फरमाइश की थी सी अजूबा फिल्म दे गाए हुए इस गीत नू सुनने की, तो इन्हों की फरमाइश पूरी कर दिया।

0: हाँ जी जी कहीं अभी ना जाओ छोड़कर, चिल्ला भी भरा नहीं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने वास्ते। अपना मनपसंद गीत सुनो अपने रेडियो सेट थे।
0: हाँ जी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। यात्रियों ने लोगों से संवाद किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतरक्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता और सतनाम सिंह तथा सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबीना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियाओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेब 374.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

फाजिलका तो सोहनलाल राठी, ओम प्रकाश राठी, शगुन राठी, लवकुश वर्मा, छतरपाल सिंह, रजिंदर सिंह, बाबू सिंह, काका पट्टी कमालवाला तो गुरमीत सिंह बिरक। इसे तरह प्रोग्राम दे विच अगला मैसेज सानू मिलिया चकला बाजार समाना शहर तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता राणी जंदल, पप्पू समाइल खुशदिल, हसमुख लाल जंदल, संजीव सुनीता बंटी जंदल, आरजू महक खुशदिल ते पूरा ही खुशदिल परिवार पूरा खुश होंदे होंदे प्रोग्राम दे विच बहुत सारे दिल दे नाल, बहुत सारे मोरां दे नाल ते बहुत सारे गुलाब के फुलां दे नाल पहुंचिया जी। इसे तरह टैगोर गार्डन नवी दिल्ली तो रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा उन्हां दा मैसेज सानू मिलिया। मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर, राजिंदर कौर, इंजीनियर अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर उन्हां दा मैसेज सानू मिलिया। ये अगला मैसेज सानू मिलिया जी छत्तीसगढ़ तो दतरंगी तो भगवंत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, वनीता, रुद्र वर्मा उन्हां दा। इसे तरह अगला मैसेज सानू मिलिया है जी सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली, शैफी, मास्टर डेविस उन्हां दा। ते अगला मैसेज है रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया उन्हां दा, क्रियांश बागड़िया, जोगेश बागड़िया, ओम बागड़िया, रजत ते बेबी गरिमा बागड़िया उन्हां दा मैसेज है गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो। इसे तरह यह मैसेज है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी भामिका ते वाणी थांदी उन्हां दा मैसेज है पिंड ते डाकखाना टोरोवाल बलाचौर नवा शहर तो इन्होंने सानू मैसेज किया है। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल वर्मा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ते डॉक्टर अमनदीप हुणा दा मैसेज है कालका तो शुभचंद्र बजाज ते साहिल बजाज ते इन्हां दे नाल ने बट्टा बजाज। इसे तरह अगला मैसेज सानू मिलिया मक्खू तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी, मनीष बजाज हुणा दा, पिंड शाहपुर मैतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पहलजोत सिंह, अनाहत कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर, हरप्रीत कौर, गगनदीप सिंह हुणा दा। ते ये मैसेज है जी सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली तो गजानन यैले, नवदीप यैले, विशवदीप यैले, अशोक यैले हुना दा। इसे तरह रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया हुना दा मैसेज है। ते हुन प्रोग्राम दे विच चलदे आं गीत दे वल, दिलदारिया गीत तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं अमरिंदर गिल दी आवाज़ दे विच।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानों विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर से।
3: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
4: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हैड आफ आफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
5: आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते इस वेले तुसी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी सुन रहे हो। ते हुण प्रोग्राम दे विच वधदे आं अगले गीत दे वल। अगला गीत आसा सिंह वस्ताना दी आवाज़ दे विच गाया होया, तुहानू कह रहा मेले वल चलण दे लई। ते नाल भी आपां अपने साथियां नू भी लैके जाना है जिन्हां ने मैसेज दे राहीं साडे इस प्रोग्राम दे विच अपनियां फरमाइशां भेजियां ने। इस तरह हुण अगली फरमाइश असीं जिहड़ी शामिल करन जा रहे हां दादरी गेट भवानी तों, कृष्ण मेरा, कोमल मेरा, किरण मेरा, कपिल मेहरा ते कुणाल मेहरा उहनां दी है। अगला मैसेज है जी मामूलवाड़ी महाराष्ट्र तो, सोपान ताइड़े PS

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा

0: परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी। इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ।

0: नमस्कार। प्रोग्राम वसदिवड़े लैके कोमल हाजिर
1: और प्रोग्राम वसदिवड़े लैके ज्योति भी हाजिर है जी। और देख लो कोमल जी, असी ठीक पूरे समय ते पहुंच जाईदा है।
0: बिल्कुल, ते साडे स्रोते साडियां भैणां वी ते पहुंच जांदियां ने, ओह पहले ही तैयार हुंदियां ने कि कदों जिहड़ा ये प्रोग्राम शुरू होए 12:05 होण ते ओह साडे नाल जुड़ जाण ते बहुत सारा एंटरटेनमेंट

0: जाओ जा बैंक नाल रजिस्टर्ड ईमेल जा मोबाइल नंबर राही जा मोबाइल बैंकिंग ऐप राही जा पत्र राही उसकी स्वै घोषणा करो ते जेकर कोई बदलाव है ता पछाण अते पते दा नवीनतम सबूत दिखाओ खाता कारजशील रखो अते बैंकिंग सेवावां दा लाभ उठाओ अपना केवाईसी अपडेट करवाउण लई अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जा बैंक शाखा दे जाओ।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनो सुचेत रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जा www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: जी ते हुन वेला है कि एक खास स्नेहा अपने श्रोतिया तक पहुंचाइए। उस नेहा है कि मच्छरों तो बच के रहो भाई, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मच्छर हर जगह पर दिखते ने, लड़ते ने और बंदा परेशान हो जाता है। तो सिर्फ इन्ना कोई नहीं है, जो लड़ते ने ना तो कई बीमारियां भी छड़ के जाते हैं।
5: बिल्कुल, और इन दिनों दे विच क्योंकि बदलाव का मौसम चल रहा है और साडा जिहड़ा रोगों नाल लड़न की ताकत है वह भी घट जाती है और पाचन तंत्र थोड़ा जिहा साडा वीक हो जाता है। सो इस बदलाव के मौसम च बहुत जरूरी है कि असी अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखिए। और जिस तरह तुसी मच्छरों की गल की है, बहुत ज़्यादा मच्छर इन दिनों दे विच पनपदा है, उहदे तो भी असी बहुत ज़्यादा अपना बचाव रखना है, सावधानी रखनी है। कोशिश करिए कि असी पूरी बांह के कपड़े जड़े है पा के रखिए
4: ते नाल नाल बीमारियां तो बचिए, क्योंकि सुनन नहीं चाह रहे आप कई मैसेज देखते हैं कई जगह ते न्यूज़पेपर जगह जगह सुनन नु आ रहा है कि डेंगू जड़ा है वो फिर अपने पैर फसा रहा है। ते डेंगू तो जड़ा बचाव है बहुत ज़्यादा जरूरी है। ते डेंगू क्यों होंदा है, उहदे की कारण ने, उहदा बचाव किवें कीता जा सकदा है, ये सारी जानकारी असी रेडियो डॉक्टर दे तहत लैंदे आ डॉक्टर शोभिता कक्कर होना तो।
5: जी, और डॉक्टर शोभिता कक्कड़ हुनां नाल गलबात कीती है जी सुखजीत कौर जी ने, आओ सुनदे हां एक गलबात।
6: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम च तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत। अज दे इस प्रोग्राम च असीं जानकारी हासिल करांगे डेंगू की हुंदा है, की कारण ने ते इसदा की इलाज है। इस दे बारे जानकारी देने लई इस वेले साडे नाल स्टूडियो च मौजूद डॉक्टर शोभिता कक्कड़ जिहड़े कि रूरल मैडिकल ऑफिसर फोलड़ी वाल ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी आयां नूं स्टूडियो च।
7: थैंक यू जी।
6: डॉक्टर साहब कहिंदे ने कि बदलदा मौसम बड़ा खचरा जिहा मौसम हुंदा है ते इस खचरे मौसम च बहुत सारियां बीमारियां हो जांदियां ने, जिन्हां विचों डेंगू इक है। और डेंगू कहिंदे ने कि पता उहनूं लगदा है जिहनूं हुंदा है किस तरीके दर्दा होंदियां ते किस तरीके बुखार सहना पैंदा है। सब तो पहलां तां सिद्धी सादी भाषा च दस दिओ कि डेंगू हुंदा क्यों है।
7: जी, तुसीं बिल्कुल सही किया
6: जी।
7: डेंगू बुखार जिहड़ा हैगा उहनूं इक वायरल डिजीज़ हैगी है, वायरल फीवर है जिहड़ा कि मच्छर कट्टण दे नाल फैलदा है
6: जी।
7: मच्छर आम मच्छर नहीं, इहनूं असीं पहचान सकदे हां। चिट्टे काली धारियां वाला मच्छर है हुंदा जिहड़ा दिन वेले कट्टदा है। सो इस नूं असीं टाइगर मच्छर भी कहिंदे आ, इहदी पछाण हुंदी है दिन वेले कटदा है,
6: धारियां हुंदियां इहदे ते।
7: जी बिल्कुल, ते जदों कटदा आ ते 3 to 4 दिनां दे अंदर अंदर इहदे लक्षण आने शुरू हुंदे आ, जिहदे विच सब तो ज़्यादा कॉमन हैगा डेंगू दा बुखार, जिहनूं असीं हड्डी तोड़ बुखार कहिंदे आ, क्योंकि जिहनूं हुंदा आ, बिल्कुल तुसीं सही किहा, उहनूं पता किन्नियां दर्दां हुंदियां उस बंदे नूं, उह इस तरहां दीआं दर्दां वी जिद्दां उहदीआं सारे शरीर दीआं हड्डियां टुट गईआं
6: होण। जी जी, तो डॉक्टर साहब कहिंदे ने कि जिहड़ा डेंगू का मच्छर हुंदा ये सफाई पसंद हुंदा, यानी कि खड़े हुए साफ पानी ते हुंदा।
7: बिल्कुल बिल्कुल, इस करके इस तो सानू ध्यान रखना चाहिए है, जिहड़े घर दे आले दुआले स्कूलां विच खेडां दे मैदान दे विच ये जो साफ पानी जिहड़ा खड़ा रहिंदा है, बारिश का पानी हो गया, कूलरां तो जिहड़ा पानी निकलता है, एसी दे विचों दी पिछों दी जिहड़ा विंडो एसी है उहदे पिछे जिहड़ा पानी चोंदा है, उह तुसीं अगर नीचे प्लेट रखी हुई है उत्थे खड़ा हो जांदा है, किचन दा या बाथरूम दा पानी जिहड़ा तुसीं यूज़ कीता होया उह खड़ा हो जांदा है, ते जिहड़ा इह मच्छर है इह मादा मच्छर जिहड़ा दूध दे कट्टण दे नाल हुंदा है, सो मादा मच्छर उहदे विच अंडे दिंदी है ते उह अंडे जिहड़े आ पानी दे उत्ते तैरदे आ, है ना, साफ पानी दे उत्ते। जे असीं इह फिर स्रोत बंद कर देंगे तो असीं डेंगू तो भी बच सकते हैं
6: जी। ते डॉक्टर साहब एक तो निशानी तुसी दस दित्ती कि हड्डी तोड़ बुखार इसनूं कहा जांदा है और बुखार हुंदा भी काफ़ी तेज़ है, इस तो अलावा होर की निशानियां ने?
7: सो जदों मच्छर सानूं कटदा जिहने जिहदे विच इह वायरस हैगा तां उह लार दे विचों दी मच्छर दी लार दे विचों दी साडी त्वचा दे अंदर जांदा है, ते 3 to 4 दिन दे विच हफ्ते दे अंदर अंदर उस व्यक्ति नूं इहदे सिमटम

0: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी
1: जी बहुत ही खूबसूरत गीत ते बड़ी खूबसूरती नाल ना मच्छर तो बचन दा इलाज सानू इस गीत ने दस्या कि मच्छरदानी दी जे वरतों कर लिए ते मच्छरा तो बचिया जा सकदा ते ये खूबसूरत अंदाज बड़ा ही प्यारा सी ते हुण मैनू लगदा साडे स्रोते इंतजार कर रहे ने कि अगले सिलसिले वल वधीए ते अज वीरवार है ते वीरवार दे दिन बहुत ही खास सिलसिला हुंदा है कथा लोक जिहदे विच नाटकी अंदाज विच एक कहानी पेश करदे आ ते आज दी कहानी है बच्चे दी शरारत
2: और बच्चे दी शरारत इस कहानी दे विच पात्रां नूं आवाज़ां दित्तियां ने जी सुखजीत कौर सरबजीत ऋषि अनिल शर्मा ते बीरेंद्र हुना ने ते आओ सुनदे हां कथा लोक दी ये कहानी बच्चे दी शरारत।

0: नहीं बोलिया।
1: ए चिट्ठी भला लिखी केदी हो सकती है, ए शरारत है केदी।
0: ओ मैडम जी, तुहाडा नन्ना मुन्ना आशिक 2 साल तुहानू नीज नाल तकदा रहा। तुहानू पता ही ना लगा ओ इधर कोई कुड़ी टुरी जांदी देख ले ते उहदे घर दीआं बरूहां की उहदी गली पुट के खा जाइए। चलो ये दसो, तुसी जाओगे मिलन उहनू कल शाम 5 बजे बैंक रोड दे उस खंभे दे हेठा? लिखदा तुसी मैनू देखदा ही झट पछाण लोगे।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं जाना, भला आ की तमाशा होया।
0: अच्छा ते चलो ऐदा करने हैं, प्रोफेसर सूरी नू भी इस तमाशे शामिल कर लेने हैं ते फिर चाह पियांगे।
2: सिद्धू आके उठन लगा तो मैडम घबरा गई। उन्हें काल नाल सिद्धू दे हथों चिट्ठी फड़ के अपनी सख्त पकड़ च लै ली। आखन लगी,
1: तुसी चंगे मनोविज्ञान दे टीचर हो, उन्हां नू चंगी लगेगी भला ये गल, भावें बच्चे दी शरारत ही है पर की पता वो की सोचण।
2: चिट्ठी उन्हें अपनी डायरी दे हेठ रख दित्ती। सिद्धू नू उहदी इह गल समझ तां आ गई पर लगी अजीब जिही। वह दोवें उठ के ड्राइंग रूम च जा बैठे जिथे दोवें बच्चे ताश खेड रहे सन। सिद्धू नू देख के प्रोफेसर सूरी भी आ गए। तिन्ने प्रोफेसर कट्ठे होए तो अपने अपने विभाग ते यूनिवर्सिटी की राजनीति दीआं गल्लां दोहराउण लग पए। रात नू मैडम लैसन तैयार करन दे बहाने अपने कमरे च बैठी रही। वह एक कागज़ ते अंग्रेजी च 4 अखरां वाले नां लिखती रही।
1: प्रेम नहीं, रवि, टीटू, बिट्टू, अमित, शाम। हाँ हाँ, ये शाम ही हो सकता है।
2: उन्हें कई वरे पहला देखे उस मुंडे का चेहरा याद आ गया। वह हमेशा पहले डेस्क ते बैंदा सी, रंग जरा सांवला सी, जड़ा जरा कु भावक जिही गल सुन या कह के लाल हो जाता सी। उहदियां अखां घुटदियां फैलदियां तर हो जांदियां सन। उहदे च पता नहीं की सी, बंदा उहदे वल खिंचिया जांदा सी।
1: पर उहदा नां शाम तां नहीं सी, शाम तां मैं रख्या सी, श्याम वरण कृष्ण।
2: मैडम नूं उहदा नां याद नहीं सी आ रहा पर चेहरा भुला नहीं सी। उह बोलदा बहुत घट सी पर मैडम दे चेहरे वल इवें तकदा रहिंदा सी जिवें चिट्ठी च लिखिया होया सी, जिहदे नाल मैडम नूं घबराहट जी होण लग पैंदी सी। वह अपना ध्यान होर पासे कर लेंदी सी पर जद नज़र उस ते जांदी तां ओ उवें तकदा हुंदा सी। उहदा नां रविंदर या ब्रिजेश सी
1: जां फिर रवि हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है, 4 अखरां वाले नां वाला।
2: कई वरियां बाद खबर मिली सी कि वह दिल्ली जा के कमर्शियल आर्टिस्ट बन के आए। नशे करदा सी, हालत माड़ी सी, सुन के उहनूं दुख होया सी। उस नौजवान दीआं नज़रां तों घबरा के उन्हें एक बार डायरी लिखी सी जिदे च उस आम जी खिच की तुलना कृष्ण ते गोपियां नाल कीती सी। मैडम ने मेज़ दा हेठला दराज खोलिया, पुरानियां डायरियां कढ़िया, फोला फाली करती रही। जद उन्हों उन्हां चों कुछ भी ना मिलिया तां पुराने कागज़ खोलण लग पई, इस आस विच कि शायद उहदी कोई लिखत मिल जावे जां अजिही कोई लिखत मिल जावे जिहड़ी इस चिट्ठी दी लिखत नाल मिलदी होवे। मैडम नूं इक कागज़ मिलिया, किसी विद्यार्थी ने सारे स्टाफ नूं संबोधन करके लिखिया सी कि इत्थे को एजुकेशन है, पर मुंडे कुड़ियां दे मिलण ते इन्नियां पाबंदियां ने कि को एजुकेशन दा मनोरथ ही खत्म हो गया है। स्टाफ दे मैंबर भी 2 वख-वख ग्रुपां च बैंदे ने, जद तक कि ग्रुप इकट्ठे होकर नहीं बैंदे स्टाफ दा विद्यार्थियों प्रति रवैया ठीक नहीं हो सकता। जे तुसीं अपना रवैया ना बदलिया असीं हड़ताल कर देंगे। मैडम ने कागज़ उस चिट्ठी दे बराबर रख्या पर उन्हां दा कोई भी अक्षर नहीं सी मिलता।
1: जे चिट्ठी उस आर्टिस्ट दी हुंदी तां किसे ना किसे अक्षर दी बनावट च जरूर कलाकारी हुंदी। कृष्ण तां इन्ना शर्माकल सी कि किसे कुड़ी नाल गल भी नहीं करता। मैनू चिट्ठी लिखण दी भला जुरत ही नहीं हो सकती उहदी, पर चिट्ठी दे हेठां दस्तखत करन लग्या उहदे हथ जरूर कंबे ने, पर किन्ना आत्म विश्वास है लिखण वाले च। अखे तुसी जरूर आवोगे, मैनू देखदिया ही तुसी झट पछाण लोगे। हो सकता है कुछ सैशन पहले ही मिलिया होवे, पर चलो नहीं।
2: ये सोचदिया मैडम नू शर्म आई।
1: फिर उहदी भला उम्र होगी की, मसीं 24-25 साल, छड परे।
2: सोच के खिज के उन्हें बत्ती बुझा दित्ती ते बैडरूम वल चली गई। पति सुते पए घुराड़े मार रहे सन, उह साह नक नाल लैंदे सन ते छड़दे बुल्लां विच ही सन। पत्नी अछोप ले जाए नाल दे बैड ते लेट गई। उन्हूं काफ़ी देर नींद ना आई।

0: कमाल है, तू मेरी लिखत भी नहीं पहचान सकी।
1: ओहो,
2: मैडम दे हाथ एकदम ढिले पै गए, शरीर झूठा जा होके कंधना लग पिया। उन्हें मरिया जी नजरां नाल पति वल वेख्या ते ढिली जी आवाज़ च बोली,
1: क्यों कीती तुसी ये शरारत, क्यों तुसी क्यों कीता इंज?
2: आख के उस सराणे च मुक्कियां मारदी होई उहदे च मूंह खुबा के रोन लगी। पति चुप सी, असल च शरारत उन्हें कीती ही नहीं सी, उन्हें तां सिर्फ चिट्ठी पढ़ी सी चोरी चोरी। वह पत्नी दियां हरकतां तों गुस्से होके घर च कलेश नहीं सी पाउणा चाहुंदा, वह हुण दे कलेश तों वी डरदा सी। उन्हें नरमी नाल कहा,
0: सुनो सॉरी, भी मैं तो गलती हो गई, इधर मैनू बहुत अफसोस है, प्लीज।
1: अफसोस है, पहला किसी दे दिल दुखा देना, बाद विच सॉरी।
2: पत्नी ने हंजू भरिया अखा नाल पति वल देखा, उस सोच सोच के होर दुखी हो रही सी।
1: ये शरारत इन्होंने क्यों की थी? किसे श्याम ने क्यों नहीं की थी?

0: जी, कथा लोक दे तहत बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ नाल कहानी सुनी।
1: बिल्कुल
0: ते कहानी सुनन दे विच तो बाद मन कर रहा है कि एक गीत भी सुन लिया जाए।
1: तुसी मेरे मन दी गल कह दित्ती है कोमल जी।
0: बिल्कुल, और मैनू लगता है स्रोतियां दे मन दी भी इयो ही गल होनी है
1: जी
0: ते सुनदे आ फिर गीत।

0: होने तुसे सुन रहे सी परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े मेरे वेब 347.6 मीटर 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दा एक बज रहा है, हुण तुसी हिंदी विच समाचार सुनोगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू

0: परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम 347.6 मेगाहर्ट्ज़ ते 73 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। लोहों तो दस दईए साडे इस मीटर तो अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दी जानकारी। हुण तो थोड़ी देर बाद दोपहर 1:15 बजे तो लैके 2:15 बजे तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस प्रोग्राम दे दौरान समाचार आपो अपने समय ते नशर कीते जाणगे। दोपहर 2:30 बजे रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसी पाली देतवालिया दे गाए लोक गीत सुनोगे। पंजाबी फिल्मी गीतां दा आनंद माणोगे। प्रोग्राम पंजाबी फिल्म संगीत दे तहत 4:02 ते श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण तुसी सरवण करोगे शाम 4:30 बजे। साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार तुसी सरवण करोगे शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 बजे तुसी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किसान वाणी सुनोगे। अज दे इस प्रोग्राम दे विच खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम दा हाल, मंडियां दे भाव दे नाल दुध उत्पादन किते विच औरतां दा योगदान, इस बारे डॉक्टर रेखा चावला जानकारी देंगे। शाम 7:00 बजे तुसी सुनोगे पंजाबी गीत।

जय हिंद फौजी वीरो, तुहाडे मनोरंजन दे लई हिंदी फिल्मां दे विचों गीत लैके हाजिर होए आ ते प्रोग्राम दे विच पहला गीत तुहानू सुनाण जा रहे आ अजूबा फिल्म दे विचों लिया अलका याग्निक ते मोहम्मद अजीज दियां आवाजां दे विच गाया गीत नू लिखिया आनंद बख्शी ने ते संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा

फौजी वीरो आओ हुन प्रोग्राम दे विच अगला गीत सुनदे आं। एक दूजे के लिए फिल्म दे विच लिया इस गीत नूं आवाजां दित्तियां ने लता मंगेशकर ते अनूप जलोटा ने ते गीत दे बोल लिखे आनंद बख्शी ने ते संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनूं एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रहीआं एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट।

0: ਭਾਜੀ ਵੀਰੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਠੀਕ 1:40 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ 1:50 ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन दा मुख उद्देश अते सुभाष होनी चाहिदी है। भारत समेत G4 विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दे जल्द सुधार दी लोड़ ते जोर दिता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री खेतर देश की तरक्की लिए एक मजबूत नींह है। भारतीय हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल AP सिंह वालों रणनीतिक तौर पर हमउत्तरी कमांड खेतर का दौरा ते मौजूदा सुरक्षा स्थिति और फौजी तैयारियों का लिया गया जायजा। भारत की मर्दों की टीम अपने आखिरी ग्रुपे मैच में चीन को 37-21 हरा के एशियाई खेडा में कबड्डी मुकाबले के सैमीफाइनल में पहुंच गई है। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਡਨਗਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਏ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा सब तो वड्डी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि भावे PM किसान होवे जां PM सूर्य घर योजना, अनगिनत अजिहियां योजनावां नूं उन्हां दे आखरी मील तक पहुंचाउण लई मानता दित्ती जांदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इह उदों हुंदा है जदों सेवा दी भावना हुंदी है ते 4 करोड़ गरीबां नूं स्थाई घर मिलदे ने। उन्होंने कहा कि जदों सेवा दी भावना किसी राष्ट्र दीआं नीतियां विच शामिल हो जांदी है तां सेवा खुद देश दी तरक्की लई सब तो वड्डी प्रेरक शक्ति बन जांदी है। श्री मोदी ने भी कहा कि नवीनताकारी योजनावां नूं जन्म दिंदा है जो 25

0: ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਓਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।

0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता

0: दोहराई गई।
1: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीशा।
2: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
3: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7 वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
2: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
5: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया।

0: है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण NH-157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया यो से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह

0: के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया यू से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नु प्रसारित करेंगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138

तू गढ़वा में तेरी डोर वे माइया। इस लोकगीत तो बाद आओ हुण अगला लोकगीत जुगनी सुन दे आवाज़ पाली देत वालिया दी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य ते स्वभाव चाहने वाली होनी चाहिए है। श्री मोदी वडनगर तो वाराणसी तक यात्रा ते जा रहे सेवा यात्रियों नाल एक वर्चुअल गलबात कीती। भारत समेत जी फोर विदेशी मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल ते जल सुधार की लोड़ ते जोर दिता। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री खेत्र देश की तरक्की लई एक मजबूत नींह है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटवार जूनियर नाल मीटिंग दौरान 1000 तो वध माल पटवारियों की भारतीय प्रीख्या शुरू करने के निर्देश दिते ने। भारतीय हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह वालों रणनीतिक तौर ते अहम उत्तरी कमांड खेतर दा दौरा ते मौजूदा सुरक्षा स्थिति अते फौजी तैयारी दा लिया गया जायजा। खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना दे कृषि विज्ञान खेतर बठिंडा विखे पराली प्रबंधन संबंधी किसान मेला अते किसान संवाद करवाया गया।
1: सरकार ने घरेलू खुराकी तेल दीआं कीमतां नूं कंट्रोल करन लई बरामद कीते जांदे प्रमुख खुराकी कच्चे तेलां दे मूल कस्टम ड्यूटी घटा दित्ती है। खजाना मंत्रालय ने ऐलान कीता है कि ग्राहकां दी सहूलत लई सारे जनतक खेतर दे बैंक अते खेतरी देहाती बैंक अथवा स्थाई संबंध नूं खुले रहणगे। अमरीका ते चीन अपनी व्यापार जगबंदी दे नूं 2 महीने वधाउण लई सहमत होए ने। भारत की महिला की टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में चीन ने 37-21 हरा के एशियाई खेडों कबड्डी मुकाबले के सैमीफाइनल पहुंच गई है।

ਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ।

लोड तेज जोर दिता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत का समुद्री खेत्र देश की तरक्की लई एक मजबूत नींह है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटवार यूनियन नाल मीटिंग दौरान 1000 तो वध माल पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिते ने। भारतीय हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वालों रणनीतिक तौर ते अहम उत्तरी कमांड खेतर दा दौरा ते मौजूदा सुरक्षा स्थिति अते फौजी तैयारी दा लिया गया जायजा। खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना दे कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा विखे पराली प्रबंधन संबंधी किसान मेला अते किसान संवाद कराया गया। सरकार ने घरेलू खुराकी तेल दीआं कीमतां नूं कंट्रोल करन लई दरामद कीते जांदे प्रमुख खुराकी कच्चे तेलां ते मूल कस्टम ड्यूटी घटा दित्ती है। खजाना मंत्रालय ने ऐलान कीता है कि गाहकां दी सहूलत लई सारे जनतक खेतर दे बैंक अते खेतरी देहाती बैंक एतवार 27 सितंबर नूं खुल्ले रहणगे। अमरीका ते चीन अपनी व्यापार जंगबंदी नूं 2 महीने वधाउण लई सहमत होए ने। भारत की मर्दां दी टीम अपने आखिरी ग्रुप ए मैच विच चीन नूं 37-21 नाल हरा के एशियाई खेडां विच कबड्डी मुकाबले दे सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। ए सी हुण तक दीआं मुख खबरां।

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नु प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138

मार के नतीजे दुपंतो अट मार के

Oh,

अज दे इस प्रोग्राम दे अखीर दे विच हुन सुनदे आं पटवारी फिल्म दे विचों महेंद्र कपूर मीनू परशोत्तम ते साथियां दा गाया अज दे इस प्रोग्राम दा आखरी गीत।

0: चली पींग देवांग जवानी जवानी चली पींग देवांग जवानी नी एक झूठा मैं भी मंगना नी एक झूठा मैं भी मंगना है
1: झूठा लेगा नसीबा वाला झूठा ले
2: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ

अपने सतगुर के बलिहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। गुरबाणी विच सच्चे गुरु तो वार ने बलिहार ने होण दा शुभ संदेश प्राप्त हुंदा है। सच्चा गुरु या सतगुरु उही है जिसनों सतपुरख या अकाल पुरख बारे

अपने सतगुर के बलिहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। गुरबाणी विच सच्चे गुरु तो वार ने बलिहार ने होण दा शुभ संदेश प्राप्त हुंदा है। सच्चा गुरु या सतगुरु उही है जिसनों सतपुरख या अकाल पुरख बारे ज्ञान हुंदा है। बलिहारे उस अकाल पुरख तो जिसकी कथा अकथ है, जो कुदरत विच वस्या होया है, सबनी थाई पूर रहया है, सतपुरख है, अकाल पुरख है। राग बिलावल विच पंचम गुरदेव फरमाउंदे ने कि हे भाई, मेरी प्रीत, मेरा संबंध, मेरा प्यार उस सोहने प्रभु नाल स्थापित हो गया है जिसनू लालन कह के संबोधन किया गया है। प्रभु ने प्यार दी ऐसी तंद कसी हुई है, ऐसी डोर, ऐसा प्रीत बंधन वाला धागा कस के रख्या है, वह ना तो तोड़िया टुटदा है ते ना ही प्रीत दी डोरी छड़ी जा सकती है। उसकी सिफत सलाह अकथ है, कथनी तो परे है उसकी बात। हे प्रभु, तेरा सेवक दासां दा दास ताही अखवांदा है, जिकर आप किरपा अते रहमत परिया हथ मेरे सिर ते सदा ही रखो। बल बल जाओ श्याम सुंदर काओ, अकथ कथा जाकी बात सुनी। सरवण करदे हां भाई जुझार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ये शब्द।

इस शब्द गायन की तसी पाई जुझार सिंह ते उन्हें दे रागी जत्थे ने वड़े किया वड़े आईया किच कहना कहन ना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संबाहे। इस महावाक अनुसार इस विच कोई संदेह नहीं कि प्रभु दी उपमा बयान तो परे है, पर इस तो ए पाव नहीं कि उसकी उस्तत नहीं करनी चाहिदी, बल्कि उसकी महिमा या वड्याई करनी ता लाजमी है। गुरबाणी प्रभु दा गुण गायन ही ता है, ताते फिर बेनती है कि हे प्रभु जी, मेरी हंकार वाली बुद्ध दूर करो, मेरे मन विच नम्रता दा वासा करन वास्ते अपनी भक्ति दी दात प्रदान करो, ताकि प्रभु मिलाप संभव हो सके। गुरबाणी रब्बी सिफत सलाह करन दा सुंदर उपदेश बख्शिश करदी है। फरमान है, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो। सुन

0: मनप्रीत सिंह होरां पासों ए वार्ता।
1: हर हर हर गुण गावो, ए उपदेश आत्मक बेनती दे भाव वाला फरमान साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है, जो केदारा राग विच शोभनीक है। ए इलाही संदेश पावन शब्द की आरंभ पंक्ति वाला पहला भाग है। संपूर्ण पंक्ति है, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो। विचार वाली पंक्ति केवल एक फरमान ही नहीं, एक आत्मक आदेश भी है, जो मनुखता नूं सच्चे मार्ग ते तुरन दी जुगत दसदा है अते उत्तम जीवन मार्ग दर्शाउंदा है। ए पंक्ति दे सधारण अर्थ ए ने, मनुख नूं परमात्मा दे गुणा दा गायन करना चाहिदा है, उस प्रभु दी सिफत सलाह करनी चाहिदी है, उस दा नाम सदा चेते रखना चाहिदा है अते सिमरना चाहिदा है। पर ए सब कुछ करन दे लई प्रभु कृपा दी लोड़ हुंदी है, पर ए भी यकीनी है कि उस दी वड्याई करन दी लोचा मन विच होवे तां जीव कृपा दा पात्र बन ही जांदा है, उस दे जीवन विच वड्डी तब्दीली आ जांदी है, आत्मक शांति प्राप्त हो जांदी है। अजोके समय विच मनुख बहुत दौड़ भज वाली जिंदगी जी रहा है, दौलत दी दौड़, उच्ची पदवी दी दौड़, मान सम्मान आदि बहुत सारियां इच्छावां दी पूर्ति वास्ते इधर उधर भज रहा है। मुकदी गल ए भटकना दे विच बहुत बेचैन है, कारण एक ही है, उसका सफर उसकी यात्रा बाहर मुखी है, अंतरमुखी नहीं है। असल खुशी ते सुख मन दे अंदर ही वसिया होया है, पर इस दे लई अपने मूल नूं पछाणन दी लोड़ हुंदी है। राग आसा विच साहिब श्री गुरु अमरदास जी बड़ी चंगी तरह समझा गए ने, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जदों मनुख अपने अंदर मन विच झाती मारदा है, प्रभु नूं सब कुछ जानदे होए उसदे गुणा दा गायन करदा है, तां मन कुदरती तौर ते शांत हो जांदा है, क्योंकि मन दा मौलिक रूप चंचलता वाला है। ए मन बेलगाम है अते दिशाहीन है, पर जदों इस मन नूं गुरु जोत दा पता लगदा है तां ए मन वाहिगुरु दा जाप करदा करदा परम ईश्वर नाल जुड़ जांदा है, ते सहजता आप मुहारे आ जांदी है, क्योंकि प्रभु दा नाम अमृत है, जिस दी प्राप्ति सतपुरशां पासों हुंदी है। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई, जित सिमरत सुख पाईए, सब तिखा बुझाई। ए सच है, जिन्हां ने नाम नाल प्रीत जोड़ी ओ हर समय चढ़दी कला विच ही रहे। हर हर हर गुण गावो फरमान सानू ए भी जांच सिखाउंदा है कि मुख राही उस्तत करन तो इलावा शुभ करमन दी राह भी अपनाउणी चाहीदी है। जेकर असी दया वाली बिरती रखिए, सच दे धारनी होइए, निम्रता नाल जीवन बतीत करिए, तां ही असी प्रभु दे गुण गायन कर सकदे हां। ए ही सरमखंड है, ए ही कालना है। गुरबाणी आदेश है, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। अज दे अशांत युग विच जेड़ी मन दी शांति मनफी हो चुकी है, उसका समाधान गुरमत ने सदियां पहला ही दस दिता सी, ओ है नाम सिमरन। नाम सिमरन द्वारा साढ़े अंदर एक उसारू ऊर्जा पैदा हुंदी है, जिस सदका मन शांत हो जाता है। इस पंक्ति विच हर तो भाव हरि है, परमात्मा है, सतपुरख है ते अकाल पुरख है। याद रहे, परमात्मा केवल धर्म स्थाना तक ही सीमित नहीं, सगों हर हिरदे विच वासा करता है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही, गुर प्रसादी जिने अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। हरी गुण गान दी प्रेरणा ते ए विधि सतसंगत विच्चों प्राप्त हुंदी है। सतसंगत दी परिभाषा गुरमत विच बयान कीती गई है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे अनुसार सतसंगत ओ अस्थान है जिथे केवल एक प्रभु दा नाम अते उस दे गुणा दी चर्चा हुंदी है। श्री राग विच श्री गुरु नानक देव जी फरमांदे हन,

0: संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। सतसंगत की महिमा भी गुरबाणी विच बाखूबी बयान की गई है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी राग गुजरी विच उचेचे तौर ते शब्द विच फरमाउंदे हन कि हे प्रभु, तेरी संगत विच आके प्राणी भवजल तो पार हो जाता है। इस तरह हो जाता है जिस तरह प्रभु की कृपा नाल सुकिया होया मन हरिया भरिया हो जाता है। मेरे माधो जी, सतसंगत मिले सो तरिया, गुरप्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। दरअसल सतसंगत है ही ऐसी पाठशाला जिथे प्रभु दे गुणा दा गायन हुंदा है। सतसंगत सतगुरु चटसाल है, जित हर गुण सिखा। जिथे एक अकाल पुरख दा नाम ही अराध्या जांदा है, क्योंकि प्रभु नाम भजन तो बिना मुक्ति संभव नहीं, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। इसे करके विचार वाले वचना विच सतगुर फरमाउंदे हन ते उपदेश करदे हन, हे भाई प्रभु दे गुण गाया करो। नाल ही स्पष्ट करदे हन कि प्रभु दी कृपा दे असी पात्र अदों ही बन सकते हाँ, अते बेनती रूप विच कहंदे ने, सृष्टि दे पालनहार प्रभु अपनी कृपा करके अपना नाम जपावो, क्योंकि प्रभु आप ही अपना नाम जपाउंदा है, आप ही कृपा करके अपने गुण गाउण दी समर्था बख्शता है। पावन फुरमान है, आप जपाए जपे सुनाओ, आप गवाए सो हरगुण गाओ। हे प्रभु, मेरे मन नूं विकारां विच्चों कढ के साध संगत विच लावो, वहम भरम झूठे मोह दे बंधन कट के अपने बचना राही कृपा करदे होए अपने दर्शन दिदारे बख्शो। मेरे मन विच्चों हंकार दूर करके मैनू निम्रता बख्शो। हे प्रभु, अपनी भगती दी दात दे के मैनू वडभागा बनाओ, ताकि मैं आप जी दे दर्शन दिदारे हरदम करदा रहा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए प्रभ मेरा।
1: हर हर हर गुण गावो। ये वार्ता सुना रहे सन मनप्रीत सिंह। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। ए सदीवी सच है, प्रभु दी सिफत सलाह करनी ही जीवन है, ते उसनू विसरना आत्मिक मौत है। पर ए सुखाला कारज नहीं, इस वास्ते प्रभु कृपा दी लोड़ हुंदी है। सोडी सुल्तान साहिब श्री गुरु रामदास जी राग कल्याण विच उचारे शब्द विच प्रभु कृपा दी जाचना बेनती रूप विच करदे ने कि हे प्रभु, रहमतां दे भंडार, कृपा करो ताकि मैं प्रभु दी सिफत सलाह दे गुण गायन कर सकां। हुण तां मैं यही आस करदा हाँ कि आप कदे अपने गल नाल लाओगे। असीं तां अनजाण बच्चे मूरख हाँ, आप ही पिता वांग सानू सोझी बख्शो। प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हौ तुमरी करो नित आस, प्रभ मुहे कब गल लावेंगे। सरवण करदे हां भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा।

0: कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशू के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानु टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ थानू दस दिए जरात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

7:10 दिल्ली केंद्र तो सुनोगे जन सेवा से जन देश सेवा। आप शहर प्रोग्राम चंद गजला फरमाओगे तो 7:55 ते फिल्मी संगीत सुनोगे रात 8:00। जन सेवा तो देश सेवा तक दा मुड़ प्रसारण सुनोगे तुसी रात 8:10 ते पंजाबी गीत सुनोगे 8:40 ते। वीविया एशियन खेडां दीआं मुख झलकियां दा प्रसारण सुनोगे दिल्ली केंद्र तो रात 10:00। 10:30 सुनोगे प्रोग्राम सरगम। शाम 6:20 ते सुनोगे प्रादेशिक खबरां। 8:30 सुनोगे पंजाबी च खबरां। 8:45 ते दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या। 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 कंट्री वाइड, 9:45 ते इनसाइट ते रात 11:00 दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार, 11:05 ते अंग्रेजी समाचार। ए सी अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरा ते उन्हां दा प्रसारण समा।

शाम 6:30 बजे स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनोगे किसान वाणी। आज इस प्रोग्राम सुनोगे खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम दा हाल, मंडियां दे भाव, दुध उत्पादन किते च औरतां दा योगदान ते गलबात करनगे डॉक्टर रेखा चावला।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो तुसी सुन रहे हो देश कान।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।

सो किसान वीरो ते पैनो, उम्मीद है कि तुहानू साडा अज दा ए गीत जेड़ा तुसी सुने है ना, जरूर पसंद आया होवेगा। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग मानसा वालों जिले दे किसानां दी एग्री स्टैक अधीन फार्मर आई डी बनाउण लई विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया मुख खेतीबाड़ी अफसर सरदार हरविंदर सिंह सिद्धू ने दसिया कि हर किसान दी एक विलक्षण एग्री स्टैक आई डी बनाई जा रही है, जो भविख विच सरकार वालों दित्तियां जाण वालियां खेतीबाड़ी स्कीमां सबसिडियां अते होर सरकारी सहूलतां दा लाभ प्राप्त करन लई महत्वपूर्ण होवेगी। पंजाब विच झोने दी सरकारी खरीद 1 अक्टूबर तों शुरू करन लई मंडियां विच पुख्ता प्रबंध कीते जा रहे हन। जिला प्रशासन अते मंडी बोर्ड वालों खरीद केंद्रां विच किसानां दी सहूलत लई हदायतां जारी कीतियां गईयां हन। पराली प्रबंधन लई CRM मशीनां जिवें बेलर अते रेकर दा प्रयोग वध्या है। सरकार अते खेतीबाड़ी माहरां वालों झोने दी सिद्धी बिजाई अते वातावरण पक्षी तकनीकां नूं उत्साहित कीता जा रहा है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ने दुध दी शुद्धता परखण लई एक सस्ती अते तुरंत नतीजा देण वाली किट विकसित कीती है। फसली विभिन्नता दे तहत कपाह, नरमा, सूरजमुखी अते मक्की दी काश्त नूं उत्साहित करन लई सरकार वल्लों बीजां उत्ते सबसिडी अते होर योजनावां लागू कीतियां जा रहियां हन। सो दोस्तो, ए सन अज दियां खेती खबरां ते हुण वेला हो गया है इक होर गीत दा आनंद माणन दा।

0: किसान वीरो ते पैणो, इस गीत तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है प्रोग्राम किसान वाणी दे विच। ते आओ हुण तुहानूं जानकारी दिंदे हां दुध उत्पादन किते विच औरतां दी शमूलियत संबंधी। ते ए जानकारी तुहानूं देणगे डॉक्टर रेखा चावला।
1: सब तो पहला मेरे सारे स्रोतियां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। मैं डॉक्टर रेखा चावला कॉलेज ऑफ डेयरी अते फूड साइंस टेक्नोलॉजी गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंसिज यूनिवर्सिटी विच प्रोफेसर दे रूप विच काम कर रही हाँ। ते अज असी गलबात करांगे कि पंजाब विच खासकर डेयरी दे विच औरतां दी की भूमिका है, उन्हां दा की योगदान है। जे असी अज गल करिए कि औरतां दी की भूमिका है, ते इस विच कोई दो राहे नहीं कि सवेर तो लैके शाम तक जिहड़ा भी काम असी पशुआं दे नाल कर रहे हां, जिहड़ा असी दुध चोके लैके आ रहे हां, उस विच औरतां दा एक बहुत ही वड्डा योगदान है। सवेर तो लैके शाम तक पशुआं नूं चारा पाणा, डंगरां दी साफ सफाई देखना, दुध चोणा, उस दुध नूं संभालना ते वक्खरे वक्खरे दुध उत्पाद बनाउणा, इह सारे ही उहनां दे सवेर तो लैके शाम वाले कम्मां विच आंदे हन। हालांकि वह सारा दिन इस काम विच लगियां रहिंदियां ने, बट फिर भी उस तो बाद भी उन्हां नूं एक सिर्फ मदद दे रूप विच देखिया जांदा है। हालांकि यह स्थिति थोड़ी जी बेहतर हो रही है, वधिया हो रही है शहरां वाले पासे, बट पिंडां च हले भी थोड़ा जिहा ध्यान देने वाली गल है कि इहो जिहे औरतां नूं, इहो जिहियां भैणां नूं थोड़ा जिहा मोटीवेट करन वाली जिहड़ी चीज़ है, उसका हले भी देखना पएगा कि किवें असी जिहड़ी भैणां ने जिहड़ा सारा दिन काम करदियां ने कि कौन किवें उन्हां नूं एज अ डेयरी एंटरप्रेन्योर देखिया जाए, किवें देखिया जाए कि वह एक डेयरी डिसीजन मेकर भी हैं। इस दे नाल नाल ही असी अज यह भी गलबात करांगे कि किवें एक छोटा जिहा डेयरी दा किता उन्हां लई एक रुजगार तो वध बन के अगे एंटरप्रेन्योरशिप का स्रोत भी बन सकता है। जे असी गल करिए कि केड़े केड़े योगदान मेरिया भैणां जिहड़ी सवेर तो शाम तक इहो जिहे काम कर रही हैं, कि केड़े केड़े योगदान है जिहड़ा उन्हां दे केड़े केड़े पद्धर है जिथे वह अपना हाथ पांदियां ने, ते इहो जिही गल्लां च सब तो पहली गल आंदी है कि असी देखिए कि सवेर तो लैके शाम तक वाले कम्मां च पहला सब तो जिहड़ा प्रमुख भाग आ जाता है वह पशुआं दी फीडिंग दे उपर आ जाता है, कि पशुआं नूं चारा पाउणा, किवें उहदी साफ सफाई रखनी है, किवें क्लीन मिल्क प्रोडक्शन दे उपर ध्यान देना है। यह सारा ही काम उन्हां दा एक रोज़ जिंदगी वाला एक पार्ट बन जाता है। इस तो बाद जे असी गल करिए जदों दुध उन्हां दा चो के बाहर आ जाता है मज्जां दा या गावां दा, उसकी किवें वह साफ सफाई रखदियां हन, किवें उसनू ठंडा करके या तो उसनू कच्चे दुध दे रूप विच रख लिया रख के वरत सकते हैं, या फिर उसका कोई उत्पाद बना के वेचिया जा सकता है। हुण इस

0: बेसिक टेक्निकल जिहड़ा फ्लो शीट है वह जिहड़ा है असी नहीं वरतदे। कदे सिट्रिक एसिड घट पाता, कदे ज़्यादा पाता, कदे तापमान उपर हो गया, कदे थले हो गया। यह छोटिया छोटिया गल्लां दुध की जिहड़ी क्वालिटी है उसनू बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करदियां हन। ते जदों दुध की क्वालिटी का प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो उसकी शैल्फ लाइफ भी नहीं बनेगी। यह छोटिया छोटिया गल्लां नू बहुत ही ध्यान देने वाली गल है। इस दे नाल ही एक होर ध्यान देने वाली गल है जिहड़ी जिन्हों असी कहने इनफॉर्मेशन गैप। वह भावें असी प्रोडक्ट के टैक्नोलॉजी के बारे गल कर लिए या गल कर लिए, कई बार भैनों नू यह नॉलेज नहीं होंगी कि किवें उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कढ़ी जाए। ते जेकर असी कॉस्टिंग रिकॉर्ड कीपिंग या दूजियां गवर्नमेंट स्कीम केड़ियां एप्लीकेबल ने, किस राही असी एक छोटे जिहे रोज़गार नूं एक एंटरप्रेन्योरशिप का रूप दे सकते हाँ, जेकर सानूं इह छोटियां छोटियां गल्लां दी जानकारी नहीं है तां साडा थोड़ा जिहा जिहड़ा एक्सपेंशन है औखा हो जाता है। इसीलिए मेरी हमेशा हिदायत हुंदी है कि साडी भैणां जिहड़े दुध दे किते विच अगे आना चाहुंदियां ने, उह हमेशा ही अपने नेड़े जो भी अपना KVK पैंदा है या यूनिवर्सिटी दे जिहड़े भी होर संस्थान ने जिहड़े उन्हां दे हेल्प कर सकदे ने इन फाइनैंशियल लिटरेसी और इन डिजिटल लिटरेसी, या किवें उन्हां दे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जिहड़े ने उस विच वाधा किया जा सकता है, उहदी ट्रेनिंग लैन ते अगे अपने इस किते नूं होर भी एक्सपैंड करन। इस दे नाल ही मेरा जिहड़ा ध्यान जांदा है कि किवें असी एक सवेर तो शाम करती हुई जिहड़ी मेरी भैन है उसनू किवें एक डिसीजन मेकर भी बनाइए। तो इस दे विच मेरा जिहड़ा अपना सुझाव हैगा वही है कि असी उन्हां नू सवेर तो शाम तक कम करन वाली एक मदद दे रूप विच ना देखिए, असी देखिए ते देखिए कि उन्हां विच केड़ा जिहड़ा पक्ष है वह बहुत स्ट्रोंग है, कि वह कॉस्ट ऑफ फीडिंग कढ सकदियां ने, जेकर उन्हां नू थोड़ा जिहा भी आइडिया है कि किवें वैटनरी कॉस्ट कढ़ी जा सकती है, तो वह एंड ऑफ द मंथ वह देख सकदियां ने कि उन्हां दी जिहड़ी लागत है वह किन्नी आ रही है ते किन्ना उन्हां दा प्रॉफिट हो रहा है। जदों उन्हां नू एक वारी पता चल जाएगा कि मेरे एक महीने दे एंड विच कि एक महीने दी जिहड़ी मेरी इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ जिहड़ी मिल्क है वह इन्नी आ रही है, जदों उन्हां नू थोड़ा जिहा आइडिया लगेगा कि आई एम कैपेबल कि हाँ मैं इन्ना कमा सकती हाँ, तो अपने आप ही उन्हां दे विच यह विश्वास जगेगा कि किवें वह एक डिसीजन मेकर बन सकदियां ने, किवें वह एक एंटरप्रेन्योरशिप जिहड़ी है वह ऑप्ट कर सकदियां ने, किवें एक छोटे जिहे किते नूं एक वड्डा एक्सपेंशन का रूप दे सकदियां ने। ते अंत विच मैं सारयां दा धन्नवाद करदे होए कहना चाहवांगी कि मेरे वल्लों जिहड़े है 3P जिहड़े है बहुत जरूरी है, जिन्हां दे उपर जेकर साडियां भैणां ध्यान देन ते हमेशा ही वह अगे वध सकदियां ने। ते सब तो पहला पी जिहड़ा मैं गल करांगी वह होएगा प्रोड्यूस। प्रोड्यूस दे बारे जेकर असी गल करिए ते दुध तां पैदा करो ही करो, बट उस दे नाल उस नूं चंगी तरह प्रोसैस करो। ते नाल ही इस दे जिहड़ा तीजा पी आ जांदा है वह आंदा है प्रॉफिट, कि किवें उसकी वधिया क्वालिटी, वधिया पैकेजिंग ते वधिया मार्केटिंग करके उस दुध राही तुसीं वधेरे मुनाफा कमाओ। ते मेरा लास्ट यही संदेश रहेगा मेरी भैणां लई, मेरे किसान वीरां लई, कि तुसीं दुध तां जिहड़ा प्रोसैस कर रहे हो करो, बट उस दे नाल ही नाल थोड़ा जिहा उसनूं टैक्निकल रूप दो, जिहड़ियां तुहानूं औंकड़ां आ रहियां ने उहनूं देखो कि किवें उसनूं सुचारू रूप विच देखिया जा सकदा है, तां ही एक वूमेन नूं एक वर्कर तो अगे एंटरप्रेन्योर ते एंटरप्रेन्योर तो अगे एक लीडरशिप दा जिहड़ा दर्जा है असीं दिलवा सकते। ते मेरी भैणां लई मेरा सब तो वड्डा मैसेज यही है कि वह अपने अगे आन वाली जिहड़ी औंकड़े ने उन्हां नूं देखन, उन्हां नूं समझन, ते उहदी किवें टैक्निकली उस चीज़ नूं खत्म किया जा सकता है उहदे बारे जेकर उन्हां नूं लगता है कि जानकारी की लोड़ है, ट्रेनिंग की लोड़ है, तो यूनिवर्सिटी तुहाडे लई हमेशा ही खड़ी है, हमेशा तुहाडी हैल्प लई खड़ी हुई है, तो सारा ही स्टाफ तुहानूं जी आयां नूं कहिंदा है। इस दे नाल ही मैं अपने वल्लों ते अपनी यूनिवर्सिटी वल्लों थैंक यू कहना चाहवांगी कि इस अज असी इस मौके ते इस विषय ते गल कर रहे हाँ जिसकी बहुत ही नीड है। अज यह बहुत जरूरी हो गया है कि असी गल करिए कि क्यों एक औरत सिर्फ घर तक ही लिमिटेड रह गई है, क्यों ना असी उहदे एक्सपेंशन बारे गल करिए, क्यों ना असी गल करिए कि एक एंटरप्रेन्योर दे रूप विच साडे समाज विच उभर के आवे।
1: दोस्तो तुसी सुन रहे सी जानकारी डॉक्टर रेखा चावला तो दुध उत्पादन किते विच औरतां दी शमूलियत दे बारे, ते हुण वेला हो गया है खेती संदेश दा। पंजाब राया 813 पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों विकसित की गई सरों की एक नवी किस्म है। इस किस्म की सिफारिश पूरे पंजाब विच सेंजू हालतों विच समय सिर बिज

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 वर्षों का जन सेवा का सफर पूरा हुआ है। इसमें 3 टर्म उनके लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर का रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
2: धन्यवाद।
1: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव।

0: रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए, आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
1: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब, गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सेचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसरा खतौनी था उनके पास
0: जी,
1: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते तो उनको लोन भी मिल सकता हो। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
0: जी,
1: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से SDM से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा, और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया। मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
0: जी,
1: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गांव हमारे ODF ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन
0: जी।
1: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गांव में हो गई है, अब इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की हमारे एक आदर्श गांव बन सके उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
0: मिश्रा साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है, और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में, लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
2: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहाँ पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गांव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम कि जो बुनियादी सुविधाएं गांव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक को मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित कर

0: कर वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा, मकान भी कैसा हो। मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है। मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं, नल से जल। जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है, जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा, हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो, यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी, स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए। लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा, पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खासतौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन कि लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गाँव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहने खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती है इस सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है। ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब, जो सबसे निचले तबके पे, जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गाँव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, यही मनरेगा के तौर पर एक योजना है।
1: बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गांवों की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी, जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए, लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गांव-गांव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय, जहाँ पे कम्युनिटी का होता है, उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने, बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में, विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा, गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, वही उनकी सुरक्षा, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है, रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
1: पीड़ा में रहती थी।
2: तो आप सोचिए कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज है जो स्टडी कराएंगे, उसके बाद अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का, चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजेस थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस, यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला, लोगों के लिए

0: अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
1: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था। इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है। और गांव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है। इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गाँव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था, उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गाँव में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गाँव में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है। बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है, महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं। यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांव में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुंच भी है।
1: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्त के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
3: देखिए, पानी पहुंचाना एक है लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक में चढ़ के वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी जिसको कहते हैं ना, तो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया तो एक पानी शुद्ध देकर के इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने, कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से

0: ज्यादा गांव हो, और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी। और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई और हमें लगता है कि 70% से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी। उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांवों की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियरल चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी एक खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और गांवों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, बिजली गांवों में पहुंचाया जाना क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे पड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी, और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा देगी। अब सवाल है बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जा करके उनको अपने घर में बिजली लेने के लिए, गांव में कुछ 2-4 लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली

0: हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे, उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली से चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो। बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो पीएससी है वो गांव के पीएससी को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार कर दी और ये हमारा जो लाभ मिला। और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: जी जी
0: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया। और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे, उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई, तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आजकल सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव-गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी। पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों के

0: के पहुंच करके सोलर्स के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
1: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहाँ पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी, अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
2: देखिए, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी, और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेती है, किसान छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं, तो वो अपनी साइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से, वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है। जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
1: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
0: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है, अब तो आज वो सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी, आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। आज जो देखे जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेनिटी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, लेकिन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, घरौनी कहते हैं घर से हो गया, इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर लेते
1: हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर
0: इस्तेमाल, बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हर एक का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी में लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपने जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस

0: होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से ले लो, गांव में प्रोडक्शन करते हैं, उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
2: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो वंचित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया, हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट कि इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे। और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहां पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा, नेता होगा, वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
2: बिल्कुल,
1: PVTGs के लिए
0: नहीं, PVTG देखिए, इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें से 75 ऐसे PVTG जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए, इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सेचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल में जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो है न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी, तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से, पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
0: इसमें जोड़ूंगा जी, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
1: जी, वाइब्रेंट
0: पहले
1: विलेज।
0: पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उपयोग करते थे, जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
1: वो पहला गांव क्यों नहीं है,
0: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन लाया कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो, वहां टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहां पीने का पानी हो, वहां स्वास्थ्य का हर एक सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड लद्दाख का हो या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है उन सारे गांवों के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।
2: ये सारे गांव की सोच का, गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, अब उनके रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई, तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर, वो बहुत ही आगे बढ़ रही है और इसका बहुत फायदा मिल रहा है वहां के लोगों का।

0: जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहां पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहां नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है, हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
1: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांव में जिस तरीके

0: जाणु करवाया गया।
1: डॉक्टर संजीव सूद वाइस चांसलर गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब होशियारपुर। इस दौड़ विच एक बहुत जरूरी चीज जिहड़ी पिछे रह गई है वह है मनुख की सेहत। ते सेहत नूं ठीक रखण वास्ते सब तो वड्डी भारत दीआं दो दाता ने पूरी दुनिया नूं आयुर्वेद ते योग। गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब दे हेठ वी आयुर्वेदिक कॉलेज ते हस्पताल हर जिले दे विच ने ते नाल ही हर जिले दे हर पार्क विच पंजाब सरकार ने फ्री योगा ट्रेनर मुहैया कराए ने। मेरी अपील है कि इस सहूलत दा फायदा चके तुसी भी स्वस्थ रहो ते लंबा जीवन भोगो।
0: एलोपैथिक दवाइयां नाल जिथे सारिआं नूं कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जांदा है पर आयुर्वेदिक दवाइयां जिहड़ीआं हन ओह शरीर नूं नुकसान नहीं पहुंचांदीआं। आयुर्वेदिक दवाइयां जिहड़ीआं जड़ी बूटियां तों दित्ती जांदी है इस करके इह वी खाण पीण दा ही साडा हिस्सा है। आयुर्वेदिक दवाइयां दे नाल बंदा स्वस्थ वी रहिंदा है अते इस नाल नियमित प्रयोग करन नाल ओह खुशहाल जीवन जीउंदा है।
2: अज दे प्रोग्राम च जिलिआं तों सहयोग रिहा मोहाली तों मनोज किरदार, गुरदासपुर तों बिशंबर बिट्टू, पठानकोट तों रजनीश कुमार, फाजिलका तों जैलेश ठठई, पटियाला तों राव वरिंदर, रूपनगर तों अवतार सिंह, तरन तारण तों अमित कुमार मरवाहा, मुकतसर तों जसविंदर सिंह बिट्टा अते होशियारपुर तों संजीव कुमार बख्शी। इस दे नाल ही समाचार दर्शन दा इह अंक खत्म हुंदा है। अगले अंक विच किसी होर विषय ते होवेगी गलबात। तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत। नमस्कार। पेशकारी सहायक मनप्रीत सिंह, पेशकश राजेश पाली। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਬਸ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ।

0: संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कौंसल दे 63वें सैशन विच उठाया गया। एशियाई खेडां विच सीमा कुमारी ने औरतां दी 10,000 मीटर दौड़ दे फाइनल विच कांसी दा तमगा जित्तिया। भारत दी मर्दां ते औरतां दी कबड्डी टीमां सैमीफाइनल विच पहुंचियां। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण विच सारयां नूं नौजवानां दी महत्वपूर्ण भूमिका नूं जोरदार ढंग नाल अगे वधाउणा चाहीदा है। श्री मोदी ने यह गल वडनगर तो वाराणसी यात्रा ते सफर कर रहे सेवा यात्रियों नाल एक वर्चुअल गलबात दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति चोणां ते शासन प्रणालियां दा आपणा स्थान है। उन्हां अगे कहा कि असीं राष्ट्र निर्माण लई समर्पित लोक हां अते एक विकसित भारत बनाउण दे संकल्प नाल निकले हां।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख उद्देश होनी चाहिदी है अते हरेक व्यक्ति का सुभा होनी चाहिदी है। उन्हें कहा कि राजनीति विच भी सेवा मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रहनी चाहिदी है, भावे कोई उच्चे अहदे ते पहुंच जावे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म भाव सेवा सब तो वड्डा फर्ज है, मार्गदर्शक सिद्धांत बनिया रहना चाहिदा है। श्री मोदी ने कहा कि सेवा सब तो वड्डी प्रेरक शक्ति है। उन्हें कहा कि भावे पीएम किसान होवे जां पीएम सूर्य घर योजना, अणगिणत अजिहियां योजनावां नूं उन्हां दे आखिरी मील तक पहुंचण लई मानता दित्ती जांदी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जदों सेवा की भावना होंदी है तां ही 4 करोड़ गरीबां नूं पक्के घर

0: प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जदों सेवा की भावना होंदी है तां ही 4 करोड़ गरीबां नूं पक्के घर मिलदे ने। उन्हां कहा कि जदों सेवा की भावना नूं किसे राष्ट्र दीआं नीतियां विच शामिल किया जांदा तां सेवा खुद देश की तरक्की लई सब तो वड्डी प्रेरक शक्ति बन जांदी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हिंदुत्व किसी के विरुद्ध नहीं है सगों यह सारे नूं नाल लेके चलता है। उन्होंने अज नवी दिल्ली विच विश्व संचार हिंदुत्व का सिरलेख वाली किताब जारी करन मौके गल कही। इस मौके बोलदिया उन्होंने नौजवानों नूं भारत की सभ्यता के अमीर विरसे नूं पढ़न, इस ते सवाल करन अते समझण दा सदा दिता। श्री राधाकृष्णन ने 1948 विच स्थापित साप्ताहिक विवेक के लंबे इतिहास से महाराष्ट्र के समाजिक सभ्याचारक जनतक जीवन नाल इस दे संबंधां दा भी जिक्र किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजसुब्रमणी ने जंग की बदलती प्रवृत्ति मुताबिक भारत की रक्षा खरीद प्रणाली नूं तेजी नाल ढालण की लोड़ ते जोर दिता है। नवी दिल्ली विच एक समागम विच बोलदिया जनरल सुब्रमणी ने रक्षा सिलसिले नूं मजबूत करन लई तकनालोजी, डेटा अते सनत नूं एकीकृत करन दी महत्ता ते जोर दिता। उन्होंने जंग के मैदान विच हथियारां दे रख रखाव ते मुरम्मत करन दे साधनां दी जरूरत ते भी जोर दिता। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि जंग की आर्थिकता भी बदल रही है। उन्होंने नवी आर्थिकता के 3 C का हवाला दिता। उन्होंने कहा कि यह 3 C कंप्यूट, कंपैटिबिलिटी और कोलैबोरेशन ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि स्टार्टअप, यूनिवर्सिटियां, इंजीनियर, विद्यार्थी और तकनोलॉजी कंपनियां देश की स्वय निर्भरता और रक्षा निर्माण में योगदान पा सकदियां ने। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के संबंध में उन्होंने कहा कि इसका असल मुल खुफिया जानकारी विश्लेषण, मिशन, योजनाबंदी, लॉजिस्टिक, जंगी मशकां ते फैसले च हमायत विच इस दी वरतों राही प्रगट हुंदा है। भारत अते नीदरलैंड ने पानी दे खेतर विच रणनीतिक भाईवाली अते सहयोग नूं मजबूत कीता है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल अते नीदरलैंड दे बुनियादी ढांचा अते पानी दे प्रबंध बारे उप मंत्री चाप स्लूटमेकर ने अज नवी दिल्ली विच 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय पानी हफ्ते 2026 दे मौके ते एक दवली मीटिंग दी प्रधानगी कीती। मीटिंग ने गुजरात विच कल्पसर प्रोजेक्ट लई तकनीकी सहयोग नूं अगे वधाउण ते विशेष ध्यान केंद्रित करदे होए पानी खेतर विच भारत नीदरलैंड सहयोग दी समीख्या करन अते होर मजबूत करन दा मौका प्रदान कीता। इस प्रोजेक्ट विच साबरमती, माही अते दादर दरियावां दे वहा दी वरतों करके ताजे पानी दे इक भंडार दी सिरजना दी कल्पना कीती गई है जो नर्मदा दरिया तों आउण वाले पानी राहीं भरिया जाएगा। दवले संबंधां दे हिस्से वजों केंद्रीय जल कमिशन, कल्पसर विभाग, गुजरात सरकार अते डच ज्ञान संस्थावां डेल्टारेस अते TU डेल्फ विचकार कल्पसर प्रोजेक्ट लई सहयोग दी सहूलत लई 2-3 समझौता पत्रां ते दस्तखत कीते गए ने। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNews ਜਲੰਧਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 10% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 19.25% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ FSSAI ਨੇ ਐਨਾਲੋਗ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ FSSAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਾਲੋਗ ਇਨ ਡੇਅਰੀ ਕੰਟੈਕਟਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਨੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨੀਟ PG 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026-27 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ MD, MS, DNB, ਡਾਕਟਰ NB 6 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ PG ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 2,65,960 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦਾ ਕਰੀਬ 99.2% ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 13ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਫੋਰਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ 32 ਤੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
2: हम देश में अपनी

0: कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK विच मनुखी अधिकारां दी उलंघना ते समाजिक आर्थिक वांझेपण दा मुद्दा जिनेवा विच संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कौंसल दे 63वें सैशन विच उठाया गया। कार्यकर्तावां ने खेतर विच मुजाहरेकारियां ते कारवाई दी सुतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच दी मांग कीती। समाजिक कार्यकर्ता हरलीन कौर ने कहा कि POJK दे लोक महीनियां तों भोजन, बिजली, रोजगार, बेहतर बुनियादी ढांचे अते सियासी प्रतिनिधता दी मांग कर रहे ने। जापान एशियाई खेडां विच सीमा कुमारी ने औरतां दी 10,000 मीटर दौड़ ते फाइनल विच भारत लई कांसी दा तमगा जित्तिया है। इस 16 सालां विच एशियाई खेडां विच औरतां दी 10,000 मीटर दौड़ विच भारत दा पहला तमगा है। भारत ने मिक्सड 4x400 मीटर रिले विच चांदी दा तमगा जित्तिया है। रोशीना देवी ने वुशु दे 60 किलोग्राम सांडा मुकाबले विच चांदी दा तमगा जित्तिया है। भारत की मर्दा दी ते औरतां दी कबड्डी टीम सैमीफाइनल विच पहुंच गईयां ने। हॉकी विच भारत की मर्दा दी टीम क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमगा जेतुआं नूं वधाई दित्ती है। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण विच सारयां नूं नौजवानां दी अहम भूमिका नूं अगे वधाउणा चाहीदा है। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजासुब्रमणी ने रक्षा सिलसिले विच टैक्नोलॉजी, डेटा ते सनद दे एकीकरण ते जोर दित्ता है। सरकार ने घरेलू खुराकी तेलों कीमतों नूं कंट्रोल करने लिए दरामद किए जाते प्रमुख खुराकी कच्चे तेलों ते मुढ़ली कस्टम ड्यूटी घटा दिती है। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 होएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनते हैं सतिंदर सरताज की आवाज़ के गीत।

सुंदर सरताज दी आवाज़ सुन रहे सी खूबसूरत गीत। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने वाले ने हुणे तो कुछ ही पला बात सुनोगे दिल्ली केंद्र तो समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 कंट्री वाइड, 9:45 ते इनसाइट। दिल्ली केंद्र तो रात 10 बजे सुनोगे वीविया एशियन खेडा दियां मुख झलकियां। बस कुछ पला दे इंतजार तो बाद सुनोगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी

0: सेवा के मार से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य

0: साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: The character of war,
3: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सके।
2: With the changing character of war.
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
4: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
6: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है, उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं, उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
7: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
8: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां है वो सुधार के वापस

0: आएंगे।
1: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वॉश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशू में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
4: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। बेस्ड नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हैं तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
4: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
3: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service

0: as the highest duty should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
2: Mission Karma Yogi was launched in September 2020, envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karma Yogi has over 1.70 crore registered users and it hosts over 6,500 courses across domain, functional and behavioral competencies. It also includes more than 200 courses on AI and emerging technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. Addressing an event, Prime Minister Narendra Modi said that the objective of Mission Karma Yogi is to make the government officials citizen-centric.
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे। टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है।
2: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान सेड दैट मिशन कर्मयोगी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द विजन ऑफ अचीविंग द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ विकसित भारत 2047 इन अ टाइमली एंड हाई क्वालिटी मैनर।
4: विकसित भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल हमारे लक्ष्य है,
5: द एम्बिशियस गोल ऑफ विकसित भारत इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम एंड विद क्वालिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आवर पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट इंश्योर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजंस। दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू एवरी स्टेट एंड एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम ग्रास रूट वर्कर्स टू सीनियर सेक्रेटरीज एंड पॉलिसी मेकर्स। कैपेसिटी बिल्डिंग इज नीडेड अक्रॉस द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। विद दिस विजन, मिशन कर्मयोगी वॉज established 5 years ago.
4: 5 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया।
2: All central government employees and officers of the All India Services are required to complete prescribed courses on iGOT annually, which get captured in their annual performance appraisal reports. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news.
6: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR

0: country wide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
1: नमस्कार, आभार, अभिनंदन। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: नमस्कार
1: महोदय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कवच प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करता है।
2: साधारण तरीके से ट्रेनें चलती हैं
1: जी,
2: तो उसमें ड्राइवर को सिग्नल देखना पड़ता है, और सिग्नल अगर हरा है तो वो चलता रहता है, अगर लाल है तो उसको ट्रेन रोकनी पड़ती है। लेकिन कई बार बारिश में, अंधड़, तूफान या कुछ घुमाई पर सिग्नल होते हैं या अन्य कई कारण होते हैं जिसमें कि, या कभी ड्राइवर भी ऐसी स्थिति में होता है कि मान लो उसको नींद लग गई तो वो सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में दो ट्रेनों के टकराव की संभावना बनी रहती है
1: जी।
2: ये एक हम बोलते हैं कैप बेस्ड सिग्नलिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहली बात तो ये कि जो भी सिग्नल का वो है, वो ग्रीन है कि लाल है कि, उसके लिए ड्राइवर को बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इंजन से वो चला रहा है उसके सामने जो डिस्प्ले रहता है उसमें उसको पता लग जाता है ये हरा है कि लाल है, कि उसके सिग्नल की एस्पेक्ट बोलते हैं क्या है, एस्पेक्ट है, उसके हिसाब से उस ट्रेन की स्पीड निर्धारित करनी पड़ती है। और दूसरा स्टेप आता है कि उसको देख लिया कि मेरा लाल है, लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक लगाना है, उसने ब्रेक नहीं लगाया या उसने ब्रेक लगाने की कुछ की, को फेल हो गया ब्रेक, तो उस कंडीशन में जब दो गाड़ियां काफी नजदीक आ जाती हैं तो उनका ये स्वचालित प्रणाली से ये दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और वो एक दूरी पर आकर रुक जाएंगी और एक जो दुर्घटना होती है उससे वो बच जाएंगी। और इसका जो उपकरण होता है वो हर इंजन में, हर लेवल क्रॉसिंग में, हर रेलवे स्टेशन में रखा रहता है, और एक ऑप्टिक फाइबर एक होता है जिससे कि डाटा ट्रांसफर होता है, वो पूरे उस जिस क्षेत्र में इसका कवरेज होता है उसमें इसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद वो उसको पूरा सुरक्षित रूप से डाटा को भेजता है और संचालित करता है, और उसकी वजह से जो ट्रेनों की घटनाएं होती थी पहले, अब एक बार ये पूरा कवरेज हो जाएगा तो वो पुरानी बात हो जाएगी, फिर ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
1: कवच 4.0

0: में नया क्या जोड़ा गया है जिससे सुरक्षा जाल को और मजबूती मिल सके?
1: इसमें कवच जो 4.0 है, ये पुराने कवच के ऊपर एक स्टेप और आगे है। एक तो देखिए, ये आपको बताएं, ये बहुत ही सुरक्षा वाला वो है, उपकरण है, और इसमें एक SIL-4 बोलते हैं, एक जो सेफ्टी के कई मापदंड होते हैं, इसमें SIL-4.0 का जो मापदंड है वो सुनिश्चित किया गया है। और इसकी जो कम्युनिकेशन प्रणाली है, जो एक से दूसरे इंजन को और एक स्टेशन से किसी आने वाली ट्रेन के इंजन को के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक सेफ्टी का एक हायर लेवल पे इसको ले जाता है। और जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी जो गति होती है, जो चाहे वो डाटा आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा हो, चाहे एक स्टेशन से दूसरी ट्रेन के ऊपर जा रहा हो, या एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ जा रहा हो, डाटा का जो एक संचालन होता है उसका एक जो सुरक्षा का लेवल है वो एक स्तर और आगे बढ़ जाता है। और जो कुछ गैप्स रह जाते हैं थे पुराने जो कवच 3.0 के पहले वाले वर्जन में, वो कवच 4.0 में उन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अब ये पूर्णतः सुरक्षित प्रणाली बन गई है।
0: दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों पर जो कवच 4.0 को 2633 किलोमीटर में चालू किया जा चुका है, तो इन मार्गों पर इसके संचालन से रेल यात्रियों को सुरक्षा और परिचालन के स्तर पर किस प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद है?
1: आपसे मैंने बताया कि वो सुरक्षा तो बढ़ती ही है, इसके साथ इसमें

0: 4.0 को 2633 किलोमीटर में चालू किया जा चुका है। तो इन मार्गों पर इसके संचालन से रेल यात्रियों को सुरक्षा और परिचालन के स्तर पर किस प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद है?
1: आपसे मैंने बताया कि वो सुरक्षा तो बढ़ती ही है, इसके साथ इसमें एक डाटा भी एक हमको मिलता है ट्रेनों का। देखिए अभी जैसे एक हमारा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गया है और हर जगह हम डिजिटल दुनिया का प्रयोग करते हैं, तो आप कवच को जो कवर्ड एरिया है उसमें आप ये समझिए कि रेलवे भी डिजिटली कंट्रोल हो गई उस एरिया में। तो ये 2660 किलोमीटर का जो एरिया है ये अब डिजिटली कंट्रोल्ड है, आप किसी मनुष्य के एक्शन पे उसके ऊपर निर्भर नहीं है। आप उस पूरे सेक्शन में एक स्वचालित प्रणाली जो कि मनुष्य की जो मानवीय गलती होती है उसके होने के पश्चात भी आपको दुर्घटना नहीं होने देगी, ये इसका एक उदाहरण है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रणाली है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोई भी नई आजकल जो तकनीक होती है उसका एक आईपी होता है जो उसके मौलिक अधिकार किसके पास है। तो नॉर्मली जो ईटी जो एक यूरोपियन प्रणाली थी उसके मौलिक अधिकार उनके पास रहते हैं, वो लोग अपना डिजाइन नहीं देते। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भारत जैसे देश है उनको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उस प्रणाली को खरीदने के लिए। तो ये जो हमने स्वचालित प्रणाली स्वदेशी बनाई है उससे एक तो पैसा भी हमारा कम लगा है, कल हम इसको अपनी खुद की प्रणाली को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आगे चल के जो इसका अगला वर्जन आएगा उसमें एआई से भी लिंक हो जाएगा ये, क्योंकि ये इतना ह्यूज डाटा जनरेट करेगा ये सिस्टम कि एक मनुष्य के लिए उसका एनालिसिस करना असंभव होगा। तो उसको एनालिसिस के लिए भी एक एआई एजेंट लगेगा, उससे जो हमारे सेफ्टी के अलावा जो हमारे ऑपरेटिंग है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हर 2 मिनट में या 2.5 मिनट में एक के बाद एक ट्रेन चला सकें। इससे हमारी जितनी ट्रेनें चलाने की क्षमता है किसी एक पर्टिकुलर रेल खंड की उसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। अब आपको एक बता दूं कि 95% कोयला जो भी पावर हाउस में जाता है वो भारतीय रेल उसका वहन करती है, और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ये कवच सिस्टम है जिसकी वजह से जो हमारी ट्रेनों की संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है और हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा संबल मिला है।
0: आम जनता के आवाजाही और आवागमन मैं कहूँ तो उस पर कितना ये सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा?
1: आपने देखा होगा कि एक आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके पास कई ऑप्शन रहते हैं, वो रोड से भी जा सकता है, अपना हवाई जहाज से भी जा सकता है, शिपिंग से भी जा सकता है, कई तरह के उसको है। लेकिन ये माना गया है कि जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये अपने आप में एक बहुत सुरक्षित तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का आवागमन का। उसमें ये कवच भी आपने लगा दिया तो कवच से उसको ऐसी एक सुरक्षा की एक शील्ड मिल गई है जिससे कि यात्री जब ट्रेन के अंदर रहता है तो उसको अधिकतर लोग बोलते हैं कि ट्रेन का सफर बस के सफर के कंपैरिजन में ज्यादा आनंददायक होता है और आरामदायक होता है, और हवाई जहाज के कंपैरिजन में एयरलाइंस के कंपैरिजन में हमारे जो रेट्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो रेलवे में हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, रेलवे में कोई भी एक जिससे कि नई ट्रेनें चला पाए आज ज्यादा ट्रेनें चला पाए उसका फायदा आम जनता को मिलता है क्योंकि वही इस प्रणाली को सबसे ज्यादा यूज करती है और उसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कवच से, कवच लगाने के बाद नॉर्मल हमारी ट्रेनें चलती हैं 110 किलोमीटर पे, 110 या 130 पे, कहीं कहीं पर अधिकतर जगह 110 है, कहीं कुछ कुछ जगह 130 है। लेकिन एक बार आप कवच प्रणाली लगा देते हैं तो ये आपके लिए संभव हो तो हो पाता है कि आप अपनी ट्रेनों को 160 के की गति पे चला सकें, 160 और उसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो ट्रेनों की गति बढ़ जाती है कवच लगाने के बाद, उससे कितनी ट्रेनें आप निकाल सकते हैं एक समय में उसकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है, और वो भी एक सुरक्षा के साथ। ये नहीं कि आपने ट्रेनें बढ़ाई और सुरक्षा को एक तरफ दरकिनार कर दिया, आप इसमें ट्रेनों की गति बढ़ती है, आम आदमी गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचेगा, सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा और आराम तरीके से पहुंचेगा।
0: यानी समय की भी बचत है, सुरक्षा भी है और एक तरीके से कहें तो टेक्नोलॉजी में भी विस्तार है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दूर दराज के क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है, माल ढुलाई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को अगर हम देखें, उसे किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा कवच से?
1: भारतीय रेल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि एक हम जैसे आम भाषा में बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक चलता है, जिस लाइन से कोयले की ट्रेन गुजरती है उसी लाइन से मेल एक्सप्रेस की ट्रेन भी गुजरती है, उसी यात्री से यात्री गाड़ियां भी जाती हैं। हालांकि हमने एक पहल की है कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है बिहार में सोनपुर तक और नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था, तो उससे काफी फ्रेट जो हमारी मालगाड़ियां उनका उसमें चलाने लग गए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी जो नेटवर्क है उसमें मिक्स ट्रेन चलती है, उसमें मेल एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। और जैसे मैंने बताया कि जो मालगाड़ियां हैं उस पे हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो निर्भर करती है, अगर ज्यादा ट्रेनें चलेंगी ज्यादा माल ढुलाई होगी तो कारखानों तक रॉ मटेरियल पहुंचेगा, पावर हाउसेस में कोयला पहुंचेगा और हमारे जो एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो उसमें हमको ज्यादा हम देश से निर्यात कर पाएंगे, जो आयातित चीजें उनको जल्दी तक खपा पाएंगे।

0: उससे पूरी एक बहुत बड़ा पुश मिलता है पूरी इकोनॉमी को, जो कि कब से संभव होगा। और एक जैसे मैंने बताई थी कि ये प्रणाली सबसे बड़ा खूबी यह है कि हमारी स्वदेशी है, इसकी वजह से हमारा खर्चा भी नहीं है। और जैसे आजकल के युग में देखा कि जब इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो कोई भी किसी का टेक्नोलॉजी बंद कर सकता है, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा खुद का है और इसको हम दूसरे को बेच के पैसा भी कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और सुर्खियों में देखते हैं कि रेल की जो एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं पर धुंध लग जाने से, कोहरे की वजह से हो जाते हैं, जो कि कवच जैसी जो प्रणाली है वो बचाती है इस तरह के एक्सीडेंट होने से। और खास करके एक्यूरेसी, जैसा आपने मुझे बताया अभी कि एक्यूरेसी बढ़ाती है और स्पीडिंग जिससे बढ़ती है, तो ऐसे में अगर हम देखें किस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उसमें भी थोड़े से जो रेट्स हैं वो कम होंगे।
0: अगर आप हमारा इतिहास निकालेंगी रेलवे का, तो उसकी संख्या बहुत ही मेजर गिरावट आई है। उसमें उसके कई आधारभूत कारण हैं। हमने ट्रैक की क्वालिटी, अपने जो रोलिंग स्टॉक बोलते हैं जो डब्बे कोचेज, उसकी क्वालिटी और हमारी सिग्नलिंग प्रणाली, हमारी सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, हमारे जो चालक गण हैं उनके ऊपर एक निगरानी, उनकी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और सुरक्षा संबंधित जो उपकरण हमने लगाए हैं, उससे एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जो आज की तारीख में जो एक्सीडेंट्स हैं वो बिल्कुल नगण्य हो गए हैं अगर हम उसको पिछले कुछ पुराने वर्षों से उसकी तुलना करें तो।
1: लेकिन ये किस तरीके से रेलवे सुनिश्चित करेगा या सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये छोटे छोटे जो शहर हैं उस तक भी ये सिस्टम उसी तरीके से पहुंच पाए, कनेक्टिविटी वैसी ही रहे?
0: देखिए, मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बोला था कि ये जो कवच प्रणाली है
1: जी,
0: ये अपना जहां भी कवच जाता है ये अपना खुद का ऑप्टिक फाइबर केबल लेके जाता है, और एक नहीं दो, तो एक पेयर जाता है, दो ऑप्टिक फाइबर केबल, उस चाहे वो कितना भी अंदरूनी गांव हो, कितना दूर दराज का इलाका हो, उस तक ही हमारे ऑप्टिक फाइबर केबल चलाए जाते हैं। और इसका हमारी जो आम जो नेटवर्क इशू है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। और ये हमारा कवच के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ये दो ऑप्टिक फाइबर केबल। उसके अलावा हर कुछ दूरी पे रेडियो टावर बनाए जाते हैं, हर स्टेशन के ऊपर एक रेडियो एंटीना रहता है। और हम अब इसको कोशिश कर रहे हैं कि LTE और 5G में भी इसको ले जाएं। तो इसके, लेकिन इसका जो भी नेटवर्क होगा वो हमारे बाकी जो आप और हम जिस मोबाइल फोन से बात करते हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं है। ये इसका जो संचालन प्रणाली है वो अपने आप में एकदम अलग है, और वो जहां जाएगा वो अपना खुद का केबल लेके जाएगा, अपने खुद के रेडियो टावर्स लेके जाएंगे, अपने खुद के दूसरे उपकरण लेके जाएंगे, जिससे कि चाहे इलाका महानगर का हो चाहे दूर दराज का हो, सुरक्षा का लेवल दोनों जगह बराबर होगा।
1: जी महोदय, देश भर में इस तकनीक को लागू करने में क्या आपकी नजर में कोई चुनौतियां भी हैं कि ये चुनौती आ सकती है?
0: चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इसमें दो चार चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि इसमें बजट का काफी खर्चा आता है, एक किलोमीटर करने में करीब करीब 50 लाख रुपए खर्चा आता है, एक जो हमारे इंजन में उपकरण में लगाया जाता है उसमें 50 लाख रुपए का उपकरण आता है। उसके अलावा जो कंपनियां ये, क्योंकि SIL 4 जो होता है, सुरक्षा का जो लेवल है 4 का, SIL 4 बोलते हैं उसको हमारी रेलवे की भाषा में, तो जिन कंपनीज के पास उसका उस लेवल की टेक्नोलॉजी है वही इसको लगा सकती है। और ऐसी कंपनी जो कि इसको लगा सकती है वो आज की तारीख दिन में सिर्फ 4 या 5 ही हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी जो जिनके पास ये तकनीकी है वो बढ़ेगी, उस दिशा में हमारा जो RDSO है, हमारी रेलवे बोर्ड है, हमारी मिनिस्ट्री है, ये काफी प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस काम के लिए सक्षम हो सके। और एक बार और उनका सक्षम जो सक्षमता का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे RDSO द्वारा दिया जाता है, और जैसे जैसे उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि वो भी इस काम को कर सकती है और ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगी।
1: महोदय, रेलवे में जो रिफॉर्म्स चल रही हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कवच 4.0 किस तरीके से उसमें अपनी भागीदारी देता हुआ नजर आ रहा है?
0: कवच जो 4.0 है ये एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है, और इसके साथ जो एक इकोसिस्टम बनेगा टेक्नोलॉजी का, जो कंपनियां इसको डेवलप कर पाएंगी, वो न सिर्फ कवच में अन्य जुड़े, जैसे हमारी आगे चल के प्लानिंग है कि हमारा फ्रेट का सिस्टम है FOIS बोलते उसको, FOIS, ऐसी कोचिंग ट्रेन का COIS क्वाइस है, तो ऐसे हमारे कई इसके अलावा पैरेलल में नेटवर्किंग चल रही है। तो हमारी ये 4.0 और उसके आगे के जो लेवल्स आएंगे तो उसमें एक तो सुरक्षा तो मिलेगी और उससे जो डाटा जनरेट होगा, अगर हम कोशिश रहेगी कि उसको हम अपने FOIS प्रणाली और क्वाइस प्रणाली से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जो यात्री ट्रेनें हैं, जो हमारी मालगाड़ियां हैं, उनके प्रचालन में भी एक अद्भुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और एक ओवरऑल रेलवे को एक मेजर पुश मिलेगा डिजिटलाइजेशन की डायरेक्शन में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कवच 4.0

0: के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: Countrywide.

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination and discipline. And today, we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Satnam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinas Dhaliwal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
2: Bharatiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal aur ab athletics mein gold ka intezar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai aur track and field se lagatar achhi khabrein samne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezar hai us sunahre pal ka jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पूवमा राजू, विशाल थेनारसु, विद्याराम राज और मनु टीएस के क्वार्टेट ने 3 मिनट 14.46 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्याराम राज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया। बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाउ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा। अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला। महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 32 मिनट 50.05 का समय दर्ज किया। ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है। साथ ही महिलाओं की 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है। 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था। 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है। अब रुक करते हैं मेंस 100m की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 सेकंड्स का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे। तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 सेकंड्स का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। यानी अब मेंस 100m में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने सिक्स्थ और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59m की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया। यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका

0: आशीष ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहे। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहे। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's single sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Alina Anto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Rushabana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabana Devi has become a 3-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yong-Book found the back of the net for the South Koreans.

0: Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
1: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकोवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गईं। कजाकिस्तान की मालिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नब्बखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वॉकओवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
0: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
2: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favor of India's Veer Chautrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuong Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuong Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
0: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
3: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
0: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shrija Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Batmuk and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
0: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna

0: शर्मा हैज द डिटेल्स।
1: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल चार में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल चार में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता है। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हायंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
2: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4 into 100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
0: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
2: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500 meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Nayocha Singh, Laiton Jim, Varinder Singh, Oynam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
0: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
1: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
0: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
1: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशु, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।
0: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final.

0: जिंदगी से कोई शिकायत भी नहीं, बस कुछ अधूरे ख्वाबों का दर्द है। जो मिला उसे मुस्कुराकर अपना लिया, जो नहीं मिला उसकी कमी आज भी महसूस होती है। आओ अगला गीत सुनते हैं, आवाज देती है लता मंगेशकर ने।
1: एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे, जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है यह भी तो पता नहीं चलता, तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वां हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

इंतजार की भी एक हद होती है, हर रात की भी एक सुबह होती है। जिसे दिल ने सच्चे मन से चाहा हो, उसकी कमी हर खामोशी में महसूस होती है। और जब इंतजार हद से गुजर जाए तो दिल बस यही कहता है, इंतहा हो गई इंतजार की।

तेरे दर पर सनम बस एक बार आने को दिल करता है, जो कह न सके कभी वो सब बताने को दिल करता है। मोहब्बत आज भी वहीं खड़ी है जहाँ छोड़ आए थे तुम्हें, बस एक बार फिर उसी एहसास में लौट जाने को दिल करता है। आओ अगला गीत सुनते हैं, आवाज़ देती है साधना सरगम ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व तो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों

कीते शुरुआत प्रोग्राम सौगात दी। अगला गीत सुनदे हां शाजिया मंसूर दी आवाज़ च।

0: रणजीत बाबा दी आवाज़ च सुनी सी जी। तो साढ़े अगले फोन कॉलर जुड़े ने साढ़े नाल, करदे आं उन्हां नाल गल। बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा प्रोग्राम च।
1: हैलो,
0: सत श्री अकाल जी। कौन ते कित्थों गल कर रहे हो
1: जी? मैं राजू बोलदा जी, चंडीगढ़
0: जी। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत। तो दसो किहड़े गीत दी फरमाइश जी? जी जी जी बिल्कुल जी। अज किहड़ा गीत सुनाइए? जगजीत सिंह की आवाज़ च सारे पिंड च पुआड़े पाए हैं तेरे गोरे रंग ने। लौंग दा रिश्का लाचो। ठीक है जी, लो सुनते हैं फिर। ठीक है जी, शुक्रिया जी बहुत बहुत। तो जी इस तरह ही 0181 2342 141 का नंबर रहेगा प्रोग्राम शामिल होने के लिए। सौगात प्रोग्राम अपना सुनेहा भेजन के लिए शामिल होने के लिए इन्होंने नंबर डायल कर देना जी। तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 13 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਗਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੀਤ।

काम चल रहा है जी। स्वागत। अगला गीत सुनेंगे सरदुल सिकंदर ते अमन नूरी दी आवाज़ च।

चले जी प्रोग्राम स्वागत। और इस वेले स्टूडियो कड़ी मुताबक रात 11:22 का समा हो रहा है। इस प्रोग्राम के सिलसिले में इस तरह ही अगे तो रहे हैं। अगला गीत जिस विच शामिल करांगे साढ़े व्हाट्सएप के जरिए श्रोते जुड़े ने साढ़े नाल प्रोग्राम विच शामिल हो रहे हैं मालियान सरधना मेरठ तो अनिल जैन जैन साहब समय जैन मुस्कान जैन ते उनका पोता जीवन जैन सारे प्रोग्राम विच शामिल हो रहे हैं जी। ते अगला गीत तुहाडी नज़र करांगा। इस तो इलावा प्रोग्राम दे विच नित्थू राम शर्मा जी ललित शर्मा इंदराज शर्मा सुरेश शर्मा भी जुड़े ने मंडी हरजी राम मलोट तो गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो उन्हों का भी स्वागत करता हाँ प्रोग्राम दे विच। ते पप्पू राधा खुश दिल ते उन्हों दा सारा परिवार हर वाडी तरह चकला बाजार समाणा तो हंस मुख लाल जिंदल जी पप्पू समाइल खुश दिल संगीता राणी जिंदल आरजू महक खुशदिल संजीव सुनीता बंटी जिंदल ते पूरा खुशदिल परिवार जुड़िया होया जी। सब दी फरमाइश ते नसीबुलाल दी आवाज़ दे विच सुनदे हां जी प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा
1: कोट पेंट तू पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा कोट पेंट तू पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा
0: शर्म न कर दी झूठ बोल दी लेके छापा छले लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले पुली जुली गहने पाते बिकिया पीड़ी मूड़ा पुली जुली गहने पाते बिकिया पीड़ी मूड़ा नी दस क्यों पाया सी।

थाना दे तू कीता वादा, चाड़ के ले आऊं मैं थाना दे तू कीता वादा। थानेदार करवाऊगा ते तो करदा गोहा कूड़ा, थानेदार करवाऊगा ते तो करदा गोहा कूड़ा। वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा, वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल।

0: प्यार तेरे नाल गूड़ा वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा
1: नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा
0: वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल।

जो लड़दा दरानी लड़दी है कित मैनू।

0: ताकी तड़का खा गया केड़ा भूखा वाली कथे झूठ ना बोली सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली
1: सस मेरी दा पुत वसवतानन मेरी दा पाई मेरा निक्का जोर लादड़ा मैं ओ भी पर जाई मेरा निक्का जोर लादड़ा

जमीन दे कबूतर वर्गी नीत बंदे देखते तेरा मालिक तैनू बचनो सौवरियां दा पिटे तेरा मालिक तैनू बचनो सौवरियां दा पिटे करी लैण ना जान कदे नी जोर पाबियां कठे करी लैण ना जान कदे नी जोर पाबियां कठे झूठ ना बोली सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली सूरज लगदा मथे झूठ

0: मर जावा टूट के मैं बोला, हड्डी मर जावा टूट के मैं बोला।
1: सूरज लगदा मथे टूट ना बोली, सूरज लगदा मथे टूट ना बोली,
0: हड्डी मर जावा टूट के मैं बोला, हड्डी मर जावा टूट के मैं बोला।
1: सूरज लगदा मथे टूट ना बोली, सूरज लगदा मथे टूट।

ने मार सौन ने चढ़िया सौन दिया कदों कमलिए हुंदिया।

तेरा कीर्तन गाई। एक कथन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारित है। पाव ए कि आत्मिक आनंदी अवस्था हे प्रभु जी आप जी दे नाम सदका ही प्राप्त हुई है, ते एक कीर्ति करन दा सबब वी आप जी दी मेहर सदका ही प्राप्त होया है। अकाल पुरख दे गुण बेअंत हन, उसदे चोज न्यारे हन, उसदी सिफत करन दा संजोग रब्बी रहमत ते ही निरपर है। सूही राग विचले फरमान विच पंचम गुरु जी बेनती वाले बचन करदे ने कि हे प्रभु ऐसा समा बना दिओ मेरे प्यारे जदों मेरी रसना आप जी दा नाम उचारदी रहे। मेरी बेनती सरवण करो दीना उत्ते दया करन वाले स्वामी, जिवें सतपुरश सदा आप जी दे गुण गायन करके अमृत रस दा आनंद माणदे ने। से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे। सरवण करदे हां भाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द गायन की तसी पाई गुरमेज सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। निरसंदेह मनुखी मन आप हुदरा है, बेलगाम है। इसनू काबू करन वास्ते उद्दम ते रब्बी रजा रब्बी बख्शिश लुड़ींदी है। इस वास्ते मन नू सिद्धे पासे लाउणा जरूरी हो जाता है। रब्बी गुणा दे गायन दी विधि नाल मन भी कृपा दा पात्र बन जाता है। केदारा राग विचले शब्द विच साहिब श्री गुरु रामदास जी मन नू संबोधित होण दा निवेकला ढंग दर्शाउंदे ने कि ऐ मेरे मन, तू हर वेले नता प्रति सृष्टि विच रमे हुए राम दे नाम दा गुणगान कर। उस गमता तो परे अदृष्ट परमात्मा जो अपहुंच है, जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता। फरमान है, मेरे मन राम नाम नित गाविया रे, अगम अगोचर न जाई हर लख्या, गुरपूरा मिले लखाविया रे। इस शब्द का गायन किया बीबी आशुप्रीत कौर ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: राम नाम नित गावी रे। इस शब्द का गायन किया बीबी आशुप्रीत कौर ते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द सोडी सुल्तान श्री गुरु रामदास जी की निर्मल रसना तो उच्चारण किया होया है, जो कि चवर छत्र तख्तों के मालक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1118

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे जियो। इस वाहे गायन की तसी बीबी गुरप्रीत कौर ते उन्हां दे साथियां ने।

0: पै बिचावे जावे पूर सगलिया पहु लिखिया सिरले नानक निरभउ निरंकार सच्चे एक महला पहला
1: नानक ने पन निरंकार होर के तेरा मरवाल कितिया कण कहानियां किते बेबिचार किते नचे मंगते जिमुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे राज रानियां बोले आल पताल लपटा क्या के मुंदड़े लपटा क्या के हार जित तने पाये नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गली टुंडिये कथना कड़ा सार कर्म मिले।

चले न चंगुर पैर हलाइन फिर सिर उडुड़ावा झाटा पाए वेखे लोग से कर जाए रोटियां कान पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो जिनका सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिन रंजना मन चाओ सिखी सिखिया।

0: सतिया मन संतोख बजाय देने का विचार दे दे मंगे सहसा गुना सोकरे संसार छोरा जारा ते कूड़े आरा खारा बाविकार एक हुंदा खाए चले था उतना पहकाए कार जलसल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जिया कहे सो तू है जाने इतना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलाहन सचनामा धार सदा आनंद रह नराती गुणवंतिया पाशार महला पहला
1: मुसलमान की पेड़ है पे कुम्हार कर।

0: पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे के गल पुरहो में चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता करिया बो तीत पवया ते तो लगया बो पे किया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने न खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पहरे एन इसकारे मोन विगुता क्यों जा गया गुरमिन सूता पगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर चाई पाए मूर्ख कंधे पत गवाए विणना में किस थाने पाए रह बिवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसंद से ते नह केवल हौ मैं शब्द जलाए।

0: सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माणी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हुए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डुबे पूर नानक बखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सचता पर जाने जय हृदय सच्चा होए कूड़ की माल उते तन करे हछत होए सचता पर जाने जय सच करे प्यार नाम सुन मरासिया ता पाए मुख द्वार सचता पर जाने जा जुक्त जाने जियो तरत काया साध क्या विच दे करता बियो सच ता पर जाने जा सिख सची ले दया जाने जी के किछ पुन दान करे सच ता पर जाने जा आत्म तीत करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरा करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड़त होए नानक वखाने बेनती जिन सच पल

0: रंग ना सोए, पैंच खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए। नान भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला।
1: लाप पाप जो राजा माता कूड़ हुआ सिकदार, काम नेम सब कुछ है।

जति सदा वह जुक न जाने छड़ वह करवा सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो ले आ जा।

दारु स्वरूप भया जा सुताम न होए तू करता करना मैं नाही जा हुकरी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया।

जा को मन ध्यान तराय फिरत थकल जोग कब हूँ को पावे आत्म परगास का वेद बाणी सहत बिरंत जास गावे जाको शिव मन गहे नात यात कबिलास का जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिर तो उदास का सो तिन सत गोरे सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गोर राम।

पहुंचते हो लोग परगाह से, देखत दर्श पाठक भ्रम भजते, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा अत लुभते, आल समूह जो कुसम सुबासे, विद्यमान गुर आप थप्यो थेरे, साचो तख्त गुरु रामदास।

यतवंत सदा सुख संपत रिद्ध आर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ा अतवंत।

तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रासे, जिव अंगद अंग संग नानक गुरे, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास, जिव अंगद अंग संग नानक गुरे, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास, मोह मल बेवस कियो काम गह केस पछाड़ियो, क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो, जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन, भव सा

सतगुरु गोबिंद जियो हम अवगुण परे।

0: रम पे पुले सोते दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुने गुरु संगत ते मिलन तुझम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू सरनाई
1: सुकह टल गुर सेविय एहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन

ਸਰੀ

राम नाम सब अर्था।

मोह माया मित फाथा

तेन सब जानन अकथन जेन साधु चरण साध पव सिर तेन सफल जान।

दयातार जगुनाथ हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा।

अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चालह मार्ग पंथा। हम अंधले को गुरु अंचल दीज जन नानक चलह मलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैतसरी महला चौथा, घर पहला चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हियर रतन नाम हर वसया, गुर हाथ धरे मेरा माथा। जन्म जन्म के कल विख दुख उतरे, गुर नाम दियो रेम लाथा।

0: नानक नाम आराध्या।
1: श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ वाहो, जुग जुग पर बटाई है ज्ञानी बुझता है।